0: आमीन।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्यार जी मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: लब्बे लब्बे लब्बे लब्बे लब्बे लब्बे।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: ए रूह मोहम्मद, शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहर अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए।

आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मोहम्मद सरवरे कौने न तोते।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए तजवीजन के रद्द कर छो। सोशल मीडिया से जारी मुख्तसर बयान में सदर ट्रंप चो आए ईरान जो जवाब पड़ो आए नाले मातर ईरानी नुमाइंदन जो जवाब मुख्य पसंद ना आयो मामले ते अवाजे ध्यान की मेहरबानी। उनका अगु मीडिया से गाल बोल कंदे सदर ट्रंप चो तो ईरान के एटमी हथियार रखने की इजाजत न डींदी। ईरान गेम खेली रो है पर हाने केस घनी देर न डनी वी। ईरान जो रिचार्ज थे यूरेनियम मलबे हेठा दफन थियल है। अमरीका जल्द उते पहची वो कें भी शख्स ईरानी रिचार्ज थियल यूरेनियम के वेच वन की कोशिश कई तो केस धमाके से उड़ा छी। वो कदें भी नचो है तो ईरान खिलाफ फौज की कार्रवाई खत्म थी वही है। कुछ हदफ बाकी बिन हफ्त अंदर हमला कर सकूं था।

ईरान जे गडियल फौजी कमान जे सरबराह अली अब्दुल्लाही जे सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई सां मुलाकात। ईरानी मीडिया मूजिब सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई फौजी सरबराह खे नवनि रहनुमाई कदमनि बाबति आगाह कयो। अली अब्दुल्लाही सुप्रीम लीडर खे ईरानी फौज जी तयारियुनि बाबति आगाही डि॒नी। कमांडर अली अब्दुल्लाही चयो त ईरानी फौज अमरीका ऐं इसराइल जे कंहिं बि कार्रवाई जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहे। दुश्मन जे कंहिं बि ग़लतीअ ते ईरान जो रद्द अमल सख़्त तेज़ ऐं फैसलाइतो हूंदो।

पाक फौज के जदीद घुर्जन से लेस्कन लाइट डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स कायम कर छो है जो ख्वाब असाजे बुजुर्गन डिठो वो ही असा मंजिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम ने चो है तो ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेजिक गडियल दिफाई मुआदो असाजे सफारती कामयाबी में सब का वही कामयाबी है। अज पाकिस्तान पैंजे असरायती जिम्मेवारानी अणधुरी सफारती जरिए तारीखी अमून गाल की मेजबानी कर रो है। हर महाजे कश्मीरी आवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखासी। पाकिस्तानी कौम असाजी ताकत है असि उन कुत आय। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीद की यादगार से हाजिरी भरी गुलदस्तो रखो ए फातह खवानी भी कई।

साईं मुंहिंजा हर रोज़ सिज भरण सां गॾु तव्हां जे नए ॾींहं जो आगाज़ थी वञे थो। केतिरा ई नवां कम ऐं ज़िमेवारियूं तव्हां जे ध्यान जो मुंतज़िर हूंदियूं आहिनि। ॾींहं जी कामयाबी ऐं ख़ुशगवार जो इनसार वॾी हद ताईं तव्हां जे रवैये ऐं तर्ज़ ते ॿधलु हूंदो आहे। हुन ॻाल्हि जी ॼाण रखण ज़रूरी आहे त तव्हां ॾींहं जो इस्तक़बाल मुस्कराईंदे कयो था ऐं ॾींहं जे कमनि करण लाइ तव्हां सुठे नमूने सां उथो था, त तव्हां खे मजबूरीअ में उथणो पवे थो, या जेकॾहिं माण्हू मुस्कराईंदे निंड मां जाॻे थो त हुन जो सॼो ॾींहुं ख़ुशीअ सां गुज़रे थो। पोइ साईं जा चवंदा आहिनि त कंहिंजो कमु करणो आहे पर खिली बि करणो आहे, रोई बि करणो आहे, पर जेकॾहिं अवां रोईंदे उथंदो बि तव्हांजी मर्ज़ी, जेकॾहिं अवां सुबुह जो खिलंदे उथंदव त हुन में अलाह बि राज़ी आहे ऐं तव्हांजो बि ॾींहुं ख़ुशगवार गुज़रंदो।

साईं मुंहिंजा अलाह ताला इंसान जे जिस्म में प्यारु ॾिनो आहे, मोहबत ॾिनी आहे। पर अलाह साईं चए थो जेको मां तव्हांखे प्यारु ॾिनो आहे, जेको तव्हांखे मोहबत जो जज़्बो ॾिनो आहे तव्हांजे जिस्म में, त उन खां वधीक 100 गुना वधीक मुंहिंजो अव्हां सां प्यारु आहे, यानी इंसान ज़ात सां प्यारु आहे। असां ॻाल्हि कंदासीं अमड़ जे प्यार जी, त अमड़ जो प्यारु तमामु वधीक आहे ऐं को अंदाज़ो नथो लॻाए सघिजे। ऐं जिन बि अमड़ जे प्यार जो ॾींहुं मल्हायो, उहे वॾा ख़ुशि नसीब आहिनि ऐं उनखे जस हुजे जंहिं अमड़ जे प्यार जो इज़हार कयो हर माण्हू सां। बहरहाल अलाह सां चए थो तव्हां सां अमड़ केॾो प्यार करे थी, तव्हां सां पंहिंजो अबो केतिरो प्यार करे थो, 100 गुना ज़्यादा मुंहिंजो प्यार अव्हां सां आहे। अलाह ताला जी ज़ात ख़ुदि मुहबत आहे ऐं मुहबत जे करे ई हिन काइनात जा जज़ाए कुल सां ॻंढिया पिया आहिनि। संदसि मक़सदु आहे त इलाही मुहबत जे दरिया में समाइजी वञूं। अलाह ताला जी ज़ात मुहबत नेकी ऐं जमाल आहे। गैर मुकमिल सालक खे आशिक़ सॾबो आहे, जेको कंहिं मुकमिल इंसान जी मुहबत जो मोहताज हूंदो आहे, जंहिंखे महशूक़ सॾियो वियो आहे। अदना दर्जे वारा जेके आला दर्जे वारनि खे खयूं मथे वञी रहिया आहिनि ऐं आख़िरकार चोटीअ ते पहुची वेंदा आहिनि। हवास पंहिंजनि हवासनि जी दुनिया जे चंद शयुनि खे ज़ाहिरु करे सघनि था। ज़हन ऐं अक़ुल वसीले कुदरत जा के थोरा राज़ परूड़े सघजनि था, पर मोहबत इंसान खे संदसि मंज़िल मक़सूद ते पहुचाए सघे थी। मोहबत इंसान जी ज़हनी अखि खोले थी ऐं अल्ला ताला जो मुशाहिदो कराए थी। मादी शयुनि सां मोहबत करण ऐं ख़्वाहिश जो ग़ुलाम थी पवण रूह लाइ धारियूं शयूं आहिनि। उहे शयूं गॾिजी संदसि परवाज़ खे रोके नथियूं सघनि।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह आमद विया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तव्हां जो असां जो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ताईं ऐं अव्हां खे सवाल बि नोट कराईंदासीं तमामु आसान सवाल हूंदो ऐं हिन वक़्तु हलूं पिया नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ कॾहिं बि न वञो वापसि ज़रूर ईंदासीं।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਜਿਵੇਂ ਸੱਖਰ ਲਾੜਕਾਣੋ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ, ਮੋਰੋ, ਮੇਰਾਪੁਰ, ਸਕਰੰਡ, ਮਟਿਆਰੀ ਐਂ ਮਾਤਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਵਾਂ ਸਾਂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧ ਪਿਆ। ऐं साईं मुंहिंजा अव्हां खे ओसीअड़ो हूंदो इंतज़ार हूंदो अॼु जे सवाल जो, त असांजे अॼु जो सवाल आहे त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। जी हा, असांजे अॼु जो जेको सवाल आहे असांजो, त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे, अव्हां खे ॿुधाइणी आहे त केतिरो तेज़ वेंदी आहे, केतिरो तेज़ पहुचंदी आहे हिकु मिंट में। अव्हां ॿुधाए सघो था असांखे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में, याने SMS ज़रिए तव्हां असांखे सवाल जवाब ॿुधाए सघो था। मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञो, LRK लिखी स्पेस ॾियो ऐं पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था। ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जेकॾहिं फेसबुक ते ॿुधो पिया या ॿुधण चाहियो था त GAFM88 जी ID ते तव्हां असांखे फेसबुक ते बि तव्हां सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं 10 बजे खां असांजी मोबाइल स्टूडियो में आन हूंदी, तव्हां मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल नोट कराए सघो था। पंहिंजो नालो असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं जा प्यार दिल जो पाणी आहे, प्यार दिल जी खोराक आहे, पाणी बि अहिड़ो जो दिल खे अगर प्यार जो पाणी न मिले त दिल जो गुलिस्तान कॾहिं बि सरसब्ज़ ऐं शादाब न थिए, खोराक बि अहिड़ी जो ॾींहं में 10 भेरा मिले त बि दिल जो ड्रहो न थिए। प्रियं जे प्यार ऐं सूंह मां ई दिल ड्रपंदी आहे ऐं नई अखियूं, पोए छो न हिन ज़िंदगी में ख़ुशीअ जो अहसास हुजे या मौत जो भउ, दिल दिल ई आहे।

0: जी साईं मुंहिंजा असांजो अॼु जो जेको सवाल आहे त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। जी हा, उमेद त तव्हां सवाल नोट कयो हूंदो ऐं असांजो सवाल इहो आहे त बिजली हवाले सां त बिजली जेका तेज़ रफ़्तार आहे हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी हा, तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब SMS ज़रिए ॾेई सघो था। असांजो SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन वेंदव, उते SLRK लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं तव्हां फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधो पिया या ॿुधण चाहियो था त असांजी GFM88 जी जेका ID आहे, जेको असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल ज़रिए असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी 10 बजे न्यूज़ खां बाद में, तव्हां असांखे सवाल जो जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा ही अखियूं, ही नज़रूं, ही दीदूं सदाई मुसाफ़िरनि जीअं सफ़र में रहंदियूं आहिनि, ही हर वक़्तु मुतलाशी रहंदियूं आहिनि, कॾहिं कंहिं ख़ूबसूरत चीज़नि जूं त कॾहिं किन ख़ूबसूरत चहिरनि ऐं अखियुनि जूं। ही अखियूं, ही नज़रूं, दीदूं पंहिंजे प्यार, पिरी ऐं ख़ूबसूरत अखियुनि जूं ॻोल्हाऊं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सदाई सूंहं ऐं प्यार जूं प्यासियूं हूंदियूं आहिनि, सूंहं अखियुनि जो नूर वधाए छॾींदी आहे। जेसी ताईं अखियूं को ख़ूबसूरत चहिरो न ॾिसनि त बेचीन जे रेगिस्तान में भिटकंदी वतनि, ऐं अगरि उहे दीदूं को दिलबर पसंदि त आशूरनि में बि ख़ुशियूं।
1: तू वक़्तु बदली

हा जी असमैन सवाल आहे असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो त बिजली जी रफ़्तार हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी असमैन, ऐं अवां चवंदा आहियो त आलमी ॾींहुं नोट न करायो, अॼु आलमी ॾींहुं मूंखे कोन लधो पर असांखे इहो ई लभी पियो त हिकु मिंट में बिजली जी तेज़ रफ़्तार केतिरी आहे। तव्हां असांखे ॿुधाए था सघो था, एस एम एस ज़रिए ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक जे ते बि तव्हां असांखे सवाल जो जवाबु ॿुधाए सघो था, ऐं तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-13228।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: कैडेट कॉलेज जगबाबाद। अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
4: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राबता 0333-733-1172।
5: अब आप सुनेंगे खबर KTN।
6: नाले माधरी राम मुखे पसंद ना आया। ध्यान जी मेहरबानी उन्हें मीडिया से गाल बोल कर

सब सुप्रीम लीडर में रहनुमाई कदमन बाबत आयो अली अब्दुल्ला सुप्रीम लीडर के ईरानी फौज तैयार बाबत आगाही डनी कमांडर अली अब्दुल्ला चौधरी इसराइल तैयार है दुश्मन की कें भी गलती से सख्त फैसला तो होंद खात्मे लाए जाटे वाले कोशिश के हाका इरादे अमल दियण घुर्जे समुद्री जहाजन की आजादी से को था न थे घुर्जे आबनार हुर्मस खोलण दबाव हुजण सां बहरान शिदत अख्तियार कंदो।

0: वजीर आजम शहबाज शरीफ ए कतर के अमीर विच में टेलीफोनिक राबतो वजीर आजम शहबाज शरीफ ए कतर के अमीर ए परडे वजीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासम अल सानी पारा इलाके सूरत हाल ए अमन कोशिश में अगबराई जो जायजो वजीर आजम कतर के अमीर के पाकिस्तान दौरे का मुंतजर आयू बिन्हीं मुल्क चटादार हिस्सेदारी के मजबूत बनाने में मदद मिली।
1: ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत कर दी। जब हमारे शेर दिल जवान मैदाने कारजार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुजदिल दुश्मन इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। यूं महज चार ही घंटों में भारत जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया।
0: भारत पलगाम वाक्य जो बुनियाद बनाया असा से जंग मड़ी पाक फौज दुश्मन के अड़ो जवाब दिनों जो दुश्मन जंग बंदी की अपील करते वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हक की जंग में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर इस्लामाबाद में शहीदन की यादगार से कोठायल तकरीब के खिताब वजीर आजम जो असाजे शाहीन दुश्मन से हमलो कर दुश्मन वायड़ो थी पो एक साल गुजरण बावजूद भारत को भी सबूत पेश न कर सको। फील्ड मार्शल एयर चीफ मार्शल नेवल चीफ हथियारबंद फौजन के जवानों के भेटा पेश करें तो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

0: छा अव्हा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहा भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

धनी हूंदा आहिनि, जेके सॾु वारा हूंदा आहिनि, उहे बि परेशान हूंदा आहिनि गर्मियुनि में त असां हिन शादीअ सॾ ते कीअं वञूं, गर्मी में गर्म कपिड़ा कीअं पायूं, ऐं ॿाहिरि गर्मीअ जी लुख पई लॻे, बाहि पई वसे, ऐं वेतर जेकॾहिं माण्हू खाधा गर्म खाईंदो त वरी जेको आहे सो इंसान जिस्म में अञा पाणीअ जी उञ वधीक लॻंदी ऐं माण्हू परेशान थिए पियो। पर बहरहाल जेको माण्हू शादी करे पियो त हुन जी हिकड़ी ज़िंदगी जी जेका नई शुरूआत थींदी आहे, ऐं कंहिं फिलासफर जे कौल जीअं त हर रोज़ नए सर नओं जनम वठे थी नई ज़िंदगी, ऐं तॾहिं कंहिं दानश्वर चयो आहे त अकुलमंद माण्हूअ लाइ हर ॾींहुं नओं ॾींहुं आहे, ऐं राति जो सुम्हण वक़्तु जॾहिं असां पंहिंजे ज़हन में हिकु खाको तयारु कयूं था त सुभाणे असांखे कहिड़ा कहिड़ा कम करणा आहिनि, पर असां रुगो इहो सोचींदासीं त असांजी शादी कॾहिं थी थिए, असांजो सुभाणो कॾहिं थो थिए, इहो इंसान पियो सोचींदो आहे। नौजवान जी इहा ज़हन में ॻाल्हि पई हूंदी आहे, ऐं ॻाल्हि कंदासीं कम जी अहमियत मुताबिक़ उनखे हासिल कंदा वञूं त जेकर ज़िंदगी में हिकु आसानी ऐं तरतीब पैदा थी पवंदी आहे, तरतीब सां ज़िंदगी गुज़ारण करे हर माण्हू परेशान खां बची सघे थो। इन जे करे कोशिशि कयो, पंहिंजी नई ज़िंदगी में तरतीब ठाहियो, इंडेक्स ठाहियो, ऐं उन सां गॾु हलो, वक़्त जी रफ़्तार सां गॾु हलो, भले शादियूं कयो पर पंहिंजे गर्मियुनि खां पंहिंजो पाण खे बच। ही ख़ूबसूरत सहरो अवां दोस्तनि जे नाम जेके हिन वक़्तु शादियूं करे रहिया आहिनि, जंहिंजी सोचुनि में आहिनि, या जंहिंजी अॼु शादी आहे, उन लाइ असांजे तरफ़ां ख़ूबसूरत सहरो समीना कंवल जो आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत
2: सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 7:30।

नगमो भी अवे बुधाईंदी पर पे अवी पहुंचाई नवीद नाज भट्टी जो गजल आ यार हर हलका बाजी खटी था सको नवीद नाज भट्टी जो गजल यार हर हलका बाजी खटी था सको कुछ कदम पोते जे हटी था सको तोखे बीठल सदाई हा मां मिलंदुस उते पांजे घर जे निहारे घिटीअ मां था सको सिंध जे उन मंझां पए थी खुशबू अचे सिंध जी उन मंझां पई थी खुशबू अचे मुंहिंजी शाजी बदन जी मिटी था सघो मां त मेरा जहिड़ो अक्स नया मथे हा विझी का

0: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो, मोरो की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

वकार जतोई, सुधीर रमन जतोई, बिलावल सनावला, जाकिर हुसैन जावेद जतोई पीरशेर खां प्रोग्राम बुधन पिया। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। उस्मान आराई मीरापुर खां इनाम ॾिनो, बंबरो ॻोठ नारो लॻ सखर खां ज़ोहिब कटबर ऐं ज़ैनल आब्दीन रहमतपुर लाड़काणे खां, नज़ीर मंगरियो रोहिड़ी खां, आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, कुर्बान अली ख़ासकेली झंडो मरी खां, ऐं हाजी इमदादुल्लाह दायो सैफुल्लाह दिलबर जवाद यासिर दायो लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां, ऐं असांजो भाउ मंज़ूर हुसैन जलबाणी, रसूल बख़्श जलबाणी, मोहसन अहसन जलबाणी ऐं नंढड़ी पोपरी हुन सां गॾु आहे, ॻोठ गाज़ी ख़ान जलबाणी खां। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं असांजा कुझु दोस्त आहिनि ॻोठ नूरसेन तुनियो बदीन खां भाउ प्रोग्राम ॿुधंदा।

जी वॾी महिरबानी। मिठी थरपारकर जे ॻोठ जगी जो तड़ खां रमेश कुमार कोहली रामचंद प्रोग्राम ॿुधनि पिया। जेकाबाद खां मोहम्मद मीरण जखराणी, मोहम्मद खान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार, अहमद खान कुंभार, हालेपुटा स्टाप मीरपुर ख़ास खां, ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफीज़ रहमान, मुल्तान खां गुल यासीन। वॾी महिरबानी भाइरनि जी। रेहान खान बखर खां मोहम्मद हफीज़ रहमान, भाइरनि जा लख कुर्ब। त साईं मुंहिंजा ख़ूबसूरत नगमो आहे, अव्हां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं, गॾिजी पिया एंजॉय कयूं।

आख़िरी लम्हा आहे न, आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा अञा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणियुनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी, अरबेलो कोरकाणी, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां इरशाद महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप. वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

0: प्यार हैदराबाद एफएम 91.6 सुन जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुदंदा रहो।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे 1 बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू। तो कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर कॉल कीजिएगा और हमारा सेगमेंट जिसका नाम है सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम स्टार्ट करने वाले हैं और कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं सिंपली मैसेज करने के लिए। जो लोग हमें सिंपली मैसेज करना चाहते हैं सो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा दैट इज FM88GA सखर, FM88GA सखर के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है जिंदगी गुलजार है की पोस्ट, उस पोस्ट के नीचे जो कि आपको नजर आ रही होगी पेज के ऊपर पहली पोस्ट, ठीक है, जो कि अब से ठीक थोड़ी देर पहले पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, 19 मिनट पहले ये पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट से लगाओ गाना सुनाओ, फर्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं 03000।
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए जी कॉलर ही मेरे साथ लाइन पे, सो चेक करेंगे कौन है कहाँ से जी। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर
1: रहे हैं आपके साथ?
0: मोहम्मद ताहिलून भाई, कैसे ठीक ठाक?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनिए आपके लिए
0: सुना रहे हमें
1: जी। कल जैसा कि माओ का दिन था तो माओ के लिए
0: जी जी सॉरी
1: माओ की शान में
0: ठीक है, सुनाइए।
1: अजमताओं की सुना दुबारिया जद तलक नैया रण भूख भेटे
0: ओके और कुछ?
1: और दोस्तों सलाम करते जवाब मोहम्मद बशीर शफी साहब है जवाब, और इसके अंदर शेख खाई साहब है, और आखिर तक मैं दिया सर को सलाम दो सुनना सब कुछ मोहम्मद अलूर के।
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और ये थे कॉलर 0111348 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल, सो आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे, सुर लगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट जिसको हम लोग कर रहे हैं इस वक्त। एक
2: अस्सलाम वालेकुम,
0: वाह बात कर रहे हैं
2: सखर से, सखर से,
0: सखर से बात कर रहे हैं। ओके जबरदस्त गाना सुनाएंगे
2: जी जी बिल्कुल गाना सुनाएंगे,
0: सुना दे
2: गजी सजा में दर्शनों में।

0: Okay, next caller. Hello. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, kaisi ho?
0: Main theek hu, kaun baat kar rahe hain?
1: Main Asma baat kar rahi hu, Mirpur khas
0: se. Asma baat kar rahi hu, Mirpur khas se. Asma, pehli dafa call kar rahi hu?
1: Ji, maine dusri baar call ki hai.
0: Dusri baar call ki hai, zabardast, acha
1: ho. Pehle ek dafa kaisi call.
0: Gaana sunane koi?
1: Gaana
0: बहुत याद आ, चले मैं इसको सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है. और कुछ कहेंगी? कुछ नहीं था. हम गाना प्ले करेंगे ब्यूटीफुल. आई थिंक आज का टंग टेस्टर कुछ इस तरीके से है कि परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी

पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। परवेज ने पुरानी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। ठीक है, ये कहना है परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो दैट अगला हमारा जो सेगमेंट है ना, जिसका नाम है तो माने में, हम करेंगे ये कि ये टंग ट्विस्टर बोलेंगे। जो बंदा सही सही ज्यादा ज्यादा बोलेगा जीत जाएगा। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: इस काफी न्यूज़
1: बैंक GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: जे वेझो वञण जी कोशिश कई रखियल धमाके सां उड़ाए छॾींदासीं, इहो करे बि न चयो आहे। ईरान ख़िलाफ़ फौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हदफ़ बाक़ी आहिनि, पर ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

படையை ராந்தட பாகிஸ்தான் அப்ரேல் மைனமே ட்ரியரா பட்ரேவன் கிளியர் ஸ்டேட் பேங்க் பாகிஸ்தான் சவணாயத்த ரக்கம் அப்ரேல் பாதார पंजवी जे भेट में 11% वधीक आहे। हलंदड़ साल जे मार्च महीने में 83 अरब 83 करोड़ डॉलर अरब डॉलर मोकिलिया हुआ। शाराए भुट्टो ईद उल उज़ा खाग खुली वेंदी, टूल टैक्स पर बीणो थी वेंदो। शाराए भुट्टो जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सुम शाराए भुट्टो ईद उल उज़ा खाग ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मनसूबे में एक पुल तामीर हेठ आहे, पुल मुकमल नदी तो मतबादल रस्तो ॾेई शाराए भुट्टो ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मुकमल खुलण खां पोइ टूल टैक्स बि बीणो थींदो। मनसूबो में 60 अरब रुपया खर्च थिया।

कराचीअ जूं ख़ानगी कंपनियूं सिंधी माण्हुनि खां रोज़गार खसण लगियूं। आवाज़ उथरण ते खेनि गिरफ़्तार बि कयो वियो। कराची में ख़ानगी कंपनी कई वक़्तु समूरनि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ पोइतनि खे निकारी वेई छॾी। पोइतनि जो चवणु आहे त कंपनी हिकु ई वक़्तु सिंधी मुलाज़मनि खे टारगेट बणाए निकालींदी आहे। पूरम ईस्ट सेंट्रल ज़िले जे मुख्य थाणनि ते मुंतकिल कया विया। कराची वारे थी चूंडनि में मुबैना दांदली जो केस दाख़िल। मुबैना दांदलीअ जो केस बाल मुलाज़िम जी फरियाद ते सिटी कोर्ट थाणे ते दाख़िल। एफआईआर में ॼाणायो वियो आहे त 7 मई ते कराची बार जे चूंडनि दौरान दांदली जी वाबिला कई वई। अणॼातल वकीलनि बिलेट पेपर्स ज़बरदस्ती खेसि नारेबाज़ी बि कई। रोड़ीअ में औरत निंगरी खे मुबैना तौर ते अगवा करे वेलणनि सां हादसो।

वरिया सिटी में पुरसार नमूने गुमथियल नौजवान जो पैंजे घर जे पेती में लाश हत वनी गुमथियल नौजवान ब्रह्मान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर में पेती में लाश हत आयो बस भाव राजा हकड़ो छोण आए तो घर अंदर कमरे में धप जान से पेती खोली तो भाव जो लाश मिलो लाश पुछण बाद भाजाई गुलनाज ए मुझो बो भाव सईद फरार थी गया शक है रहमान की जाल ए भाव कतल कर लाश पेती में बंद कर बलोचिस्तान के इलाके हब में एनर्जी कंपनी जो मैनेजर फुर मजम्मत से कतल पुलिस चवण है फैक्ट्री एरिया में फुरन शोएब सदीक के फुर मजम्मत करण से गोली हणी कतल कर मकतूल जो मर्ज अस्पताल मुंतकिल किया वो सखर के इलाके कंदरा में धाड़ेलन से मुबैना मुकाबले दौरान शहीद थियल पुलिस अहलकार जनाद नमाज पुलिस हेडक्वार्टर में अदा शहीद गुलमोहम्मद उर्फ गुलन तुनियो जनाद नमाज में एसएसपी सखर पुलिस ऑफिसर अहलकार वासन बेन की शिरकत

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते
0: बदलदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर है वो किसने अच्छा अच्छा बोला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: हिंदुस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हाण नरम
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

ओके कॉमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं। स्मार्ट किशोर कहते हैं सिस आप थोड़ी सी अच्छी बन जाओ, जिंदगी भर हमारे दिलों पर राज करेंगी। अच्छा अभी क्या कर रही हूँ फिर मैं? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा अच्छी बनने की बात हो रही है तो ये बताएं कि बुरा क्या किया है मैंने, ऐसा क्या किया है जो आपको बुरा लगा है?

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: खेस घणी ढर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचायो जो नई मलबे हेठां दफ़न आहे। जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं। कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तम थी वई आहे। कुझु हदफ़ रहियल आहिनि। ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।
5: तेहरान दुश्मन आरो कॾहिं बि कंधो न झुकाईंदो। ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइ ते हटणु न आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो दिफ़ा आहे।

शाहराय भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं खुली वेंदी, टोल टैक्स बि बीणो थी वेंदो। शाहराय भुट्टो जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्यास सुमरो जो चवण आहे त शाहराय भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं ट्रैफिक जे लाइ खुली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल न थी त मुतबादिल रस्तो ॾेई बि शाहराय भुट्टो खे ट्रैफिक लाइ खोलियो वेंदो।

रोड़ीअ में औरत निगरी खे मुबैना तौर ते अगवा करे वेनलम सां हादसो, ॿ ॼणा फोत, औरत ज़ख़्मी, निगरी गुम। कोमी शाहरा ते ट्रालर मोटरसाइकिल में टकर थियण सबब ॾिनो जागीराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फोत थिया। भारू धुर जा माण्हू इल्ज़ाम मड़ियो आहे त जागीराणी धुर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारी खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार फोत थिया, औरत नज़ीरा भारू ज़ख़्मी थी, ॿारी रुखसाना गुम आहे। पुलिस जो चवण आहे त मामले जी जांच कई पई वञे। निगरी जी ॻोल्हा बि जारी आहे।

0: बिरा सिटी में परेशान नमूने गुम थे नौजवान जो पंजे घर की पेतीय में लाश थे। रहमान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर में पेतीय में लाश मिलो। संदस भा राजा हकड़ो चवाए तो कमरे में धप थे पेती खोली तो भाव जो लाश मिलो। भाजाई गुल्लाज बो भा सईद फरार थी व्या शिकायत रहमान के जाल ए भाव कतुल कर लाश पेतीय में बंद कर हो।
1: बलोचिस्तान के इलाके हब में नजी कंपनी जो मैनेजर फुर्म अजम से कतल। पुलिस चवण तो फौरन शोएब सदीक के गोलियों हणी कतल कयो।
0: सखर के इलाके कंधरा में धाड़ियों से मुकाबले दौरान शहीद थे पुलिस अहलकार की जनाजे नमाज पुलिस हेडक्वार्टर में अदा। शहीद गुल मोहम्मद उर्फ गुलन तुनियो की जनाजे नमाज में एसएसपी सखर पुलिस ऑफिसर अहलकार वारसन ए बेन की शिरकत। शहीद जो मढ़ जनाजे नमाज बाद अबाणे गोठ में मिट्टी में हवाले कर वो।
2: गरीबन की हालत राम वर्मा आयो असी बाहू था बदू इंतजामिया के मुल्क में असा बच्चा महफूज ना चौं के असा कें तरह से वजू असा चई इंतजामिया के बार बार अस अपीलू कर तकलीफ पे आयु तो खुदा राम मुझी मासूम उनके बाजियाब कराए वे मुझी मासूम वही तो आखिरकार वही कादे जमीन की वही है आसमान करी वो खुदा राम असि बार बार अपीलू कर तकलीफ पे आयु।
1: मासूम वाड़ी उजाला परवीन की बाजियाबी लाए मेड़ में अगवा थियल मासूम वाड़ी उजाला परवीन के अगवा थन्दे 28 दिन गुजरी वा वासन सिविल सोसायटी की भुख हड़ताली कैम्प जारी। पुलिस की जुड़ियल जेआईटी भी को नतीजो न डनो। उजाला परवीन सोलंकी की वालद प्राइमरी उस्ताद शमसुद्दीन सोलंकी धीर लाए लुड़क लाड़े वेठो अथन चवण है तो 28 दिन गुजरी वा पर पुलिस रुगो खातरू कराने में पूरी है यानी बाजियाब कराए इंसाफ किया वे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
7: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
8: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: होगा जी प्रोग्राम में, आप हमें ज्वाइन करते जाइए, मजे करेंगे, आप लोगों के साथ साथ बातें होंगी और आप लोगों को बताए जाएंगे जनाब खूबसूरती के राज। यहाँ पर टाइम हो जाता है, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइटिश शो। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, ठीक है, यही बैठिएगा।
1: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़का
2: इट्स 1:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़कना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप लोगों को जो है ना वो एक घंटे में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, दूसरे घंटे में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। ऐसा ये होगा कि सारी चीजें मिक्स नहीं हो जाती और इससे आप क्लियरली जो है ना वो चीजें समझ जाएंगे और आपको आराम से सारी बातें समझ भी आ जाएगी। तो बिल्कुल आज आप लोगों के लिए जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि टाइम इस मरतबा जो होता है यानी कि पहले वाले घंटे में थोड़ा सा ज्यादा हमें लग रहा होता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा प्रोडक्ट है। तो ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जो है आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप व्हाइट एज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं ना, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो व्हाइट एज का अगर आप फेस वॉश लगाते हैं, जैसे कि व्हाइट एज का विटामिन सी के साथ साथ फेस वॉश है और विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जाहिर सी बातें बढ़ाएगा और साथ साथ जो है ना और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को हमेशा क्लियर और ब्यूटीफुल बनाए रखेगा। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिएगा जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार शुदा है। उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप ट्राई करते हैं, तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना आपकी स्किन को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा, आपकी स्किन को जो है ना वो फेयर करेगा, आपके चेहरे पर जितने भी साइड इफेक्ट हैं सब चीजों से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगा और आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारी चीजें खत्म करेगा, क्योंकि व्हाइट एज का जो सोप है ना वो भी एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एक जदीद और स्किन केयर प्रोडक्ट है जो जल्द को तरोताजा और नरम बनाता है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी पहले नंबर पर है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता है कि एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है। दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को महफूज बनाए रखती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, स्याह धब्बे हैं, तो उनको कम करती है और आपकी स्किन जो है ना यानी कि आपकी जो जल्द है वो साफ और रोशन बन जाती है। इसमें कुदरती अज्जा है जो कि एलोवेरा है, जाहिर सी बात है, और एवोकाडो भी है जो जल्द है वो साफ और रोशन बन जाती है। इसमें कुदरती अज्जा है जो कि एलोवेरा है, जाहिर सी बात है।

मिले हैं। उसके साथ साथ हम जरा मूव करते हैं मेरे फेवरेट वाले प्रोडक्ट की तरफ, आप समझ तो गए होंगे। तो बिल्कुल जी, मेरा जो फेवरेट वाला प्रोडक्ट है वो व्हाइट एज लवली क्रीम है। और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना जनाब, ये इतनी जबरदस्त है, रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन के साथ साथ तैयारशुदा है, जिसके अंदर 30 वाइटामिन कैप्सूल मौजूद है। और 30 वाइटामिन कैप्सूल मौजूद है, जैसे कि इसमें हर तरह का वाइटामिन मौजूद है, वाइटामिन B3 है, वाइटामिन C है और वाइटामिन E की ताकत के साथ साथ आपकी जिल्द को निखार देगा और बेहतरीन आपकी जिल्द को खूबसूरतियां भी देगा। और इसके साथ साथ

जो स्टार्ट आ जाती है हमारी चेहरे पर, जो धूप पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा जो है ना वो डल हो जाती है। बल्कि व्हाइट एश लवली क्रीम आप लगाकर अपने काम भी कर सकते हैं, धूप में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन एड की गई है। आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगी और आपको हमेशा जो है ना ब्यूटीफुल लुक भी देगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिए, आप हर एज में लगा सकते हैं क्योंकि ये एक लवली फेयरनेस क्रीम है, तो आप जरूर लगाइएगा। उसके साथ साथ जो है ना आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ साथ जिन लोगों की स्किन के ऊपर दाने काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्नी का मसला है, एक्नी की वजह से आप परेशान बैठे हैं, तो जनाब डॉक्टर पिम्पल नाम से ये ट्यूब आपको मिल जाता है। डॉक्टर से जाते हैं, ट्यूब परचेज करते हैं, ये एक्नी ट्यूब ही आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो जनाब आप लोगों को पता हो कि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। आपके चेहरे पर अगर एक्नी मार्क्स हैं, या फिर आपके चेहरे पर कोई भी जिद्दी सा दाना है, या फिर आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्ट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर आपके चेहरे पर ऑयल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इन तमाम तरह चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन तमाम तरह चीजों को आप लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोगों के लिए डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है जो कि व्हाइट एज वालों का ही है। तो डॉक्टर पिंपल नाम से आप इसे जो है ना वो परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जाकर। आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप डायल कीजिए 03157990595। ये नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम तरह प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते, इतने भी प्रोडक्ट्स ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए ताकि आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकें। आपके लिए भी आसानियां, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानियां।

ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयारशुदा है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, तो आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी, ये बात तो है. अच्छा कश्यप कहती है कि आप ही आपको सराइकी आती है, अगर आती है तो मुझसे सराइकी में बात किया करें, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी. जी मुझे सिखाइए, वैसे मुझे आती नहीं है.

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और साथ साथ प्रोग्राम है जी इतना प्यारा और इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, जिन आपने अप्लाई करना है। वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का इंतखाब किया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फला इंसान ने मुझे बताया है और ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट ना भी करे तब भी आप लगा रहे होते, तो ऐसा मत किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंस प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, जिन आपने अप्लाई करना है। वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का इंतखाब किया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फला इंसान ने मुझे बताया है और ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट ना भी करे तब भी आप लगा रहे होते, तो ऐसा मत किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, और उसके अलावा अगर उससे भी ज्यादा हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम, तो ये तो भाई कमाल का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नाइट में भी आप लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, या फिर आप स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो हर एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना है, और साथ साथ ये हमारे साथ मौजूद है बाजी। क्या हाल है आपके बाजी? अल्लाह को सलामत रखे। सिकंदर अली जामरी हैं, अरसलान अली जामरी हैं, कोट रोशन अली जामरी अली आबाद से हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। नूरी सिंतनियो भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम नूरी सिंतनियो भाई जान। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, ओके अल्ट्रा ये गाना आपने मुझे डेडिकेट कर दिया। चलिए हम सुनेंगे फिर सोचेंगे कि ये मुझे डेडिकेशन के लायक गाना था भी या नहीं। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल अमहर कहते हैं और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मैंने परचेज कर ली है। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा फिर आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ है, तुम जितनी बार रूठोगे हम उतनी बार मना लेंगे, ये दोस्त बस तुम अपनी, उसके बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है। तो भाई को वेलकम करते हैं। इरम वालेकुम अस्सलाम कहते मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच इरम। आने सिया मान भी जा, अब लगा व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स ताकि खूबसूरत हो जाए आप भी। अच्छा व्हाइट एज के प्रोडक्ट की मैं जितनी बात करती हूँ ना, मतलब वो थोड़ी बात करती हूँ, हाफ हिस्सा बात करती हूँ, अद्ध अन्या हिस्सो रह लाइट होता तम अन्या खूबसूरती जो रुका ना, अध स्टेज ते पहुंचाई वहां चाहिया नहीं, तो तमाम जगह सब माणो मुख्य बुधो पाया तमाम सब जो ना व्हाइट एज का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पान बुधाए तो बाजी असा हेड़ो रिजल्ट मिलो अव, तो तमाम जरूर ट्राई करे डिसो। और संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। आयुष मामन गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से वेलकम जी।

अच्छा महर इरफान सी आज साहब हमारे साथ मौजूद, कहते गुड होस्टिंग, ग्रेट प्रोडक्ट्स बाय वाइट एशियन टी स्किन, यस वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल आपको भी। हाँ जी, आप बिल्कुल ना जाइएगा कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो आप बैठे रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: जिस धरती से जुड़ा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: कंहिं बि कंधु न झुकाईंदो, ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइते हटणु नाहे। ईरानी सदर मसूद पेज़शियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जो दिफ़ा आहे। तेहरान जो मक़सदु रुगो जायज़ हक़नि जो तहफ़ुज़ करणु आहे। अमेरिका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं। ईरानी परे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त अमेरिकी क़दमनि सां ख़िते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती खे सख़्त नुक़सान पहुतो आहे। सूरतहाल वधीक ख़राब थी रही आहे। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो।

0: रोहिड़ी वेझो कौमीशाह ते शकी रोड हादसो मुबैना तौर औरत ऐं निंगरे खे मोटरसाइकिल ते अगवा करे वेंदड़ बजरा फौत मुबैना तौर अगवा थियण खां
1: एक साल का होते ही इसकी शरारती
0: ॾिनो जागीरानी ऐं अज़ मोहम्मद फौत थिया आहिनि। औरत नज़ीरा भारो ज़ख़्मी थी ॿारी रुख़सान गुम आहे। पुलिस जो चवण आहे त मामले जी जांच कई पई वञे। निंगरी जी गोला बेजारी आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
6: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: इस्तेमाल कई आहे उहो प्रोडक्ट कहिड़ी बि थी सघे थी कॾहिं तव्हां कंहिंजो चोरी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो
1: आहे
0: तव्हां त हारजी विया तव्हां त सच ॻाल्हायो कूड़ ॻाल्हाइणो हुयो हा न मज़ो त तॾहिं ईंदो न चलो दोस्तनि खे यादि कंदा या बसि गुड बाए ओके वालेकुम अस्सलाम जमालुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद है शिकारपुर से कॉल करते हैं माशाल्लाह और इनका आज गाना हमने नहीं सुना बस मैं चाह रही हूँ कि आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स पे करेंगे ठीक है तो अगर आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप थोड़ा सा ना झूठ वाला दीजिए जो सच बोलना मना है सेगमेंट है हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल पे करेंगे कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-8 नेक्स्ट कॉलर ॾिसूं कहिड़े सिसगढ़ मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: कहिड़े सिसगढ़ मौजूदु
2: आहे
0: दुआ दुआ छा हाल आहे ख़ुशि आहियो दुआ अलहमदिल्ला मां बि बिल्कुलु ठीकु आहियां प्रोग्राम ॿुधो पिया दुआ अलाए छा चयो हलो हा इहा बि ॻाल्हि आहे मूंखे ॿुधायो त तव्हां प्रोडक्ट वरिता आहिनि वाइट एज जा या फिर डी स्किन जो कोई बि प्रोडक्ट हिनमहिल ताईं या सिर्फ़ अञा ॿुधो था चलो वठिजो बिल्कुलु ऐं मूंखे तव्हां मतिलबु सवाल पुछां तव्हां खां सेगमेंट में जेको ॿुधो आहे
2: सेगमेंट
0: अच्छा सवाल तव्हां जे लाइ इहो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो छा सूरती आहे उहा नेचुरल आहे छा न तव्हांजी ख़ूबसूरती माना नेचुरल न आहे ओके तव्हां मतिलब माशा अल्लाह इलाही होशियार आहियो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा दुआ दुश्मन हीअ कहिड़ा दुश्मन जेके तव्हांजो प्रोग्राम था ॿुधो वाह वाह माना तरक़ी थी वई आहे जी जी हलाईंदा त आहिनि न हलंदो आहे चलो ॾिसंदासीं त छो थो हले चलो दोस्तनि खे यादि कंदो या बसि बस हो गई हमारी चलो थैंक यू सो मच दुआ तव्हां कॉल कई माशा जी जी
2: हेलो
0: जी जी छा पुछा न बस हाणे दोस्तनि खे यादि कर त कर न त ॿी कॉल वठूं चलो थैंक यू सो मच दुआ सां सां गॾु मौजूदु दुआ या दुश्मन असांखे ॿुधण सां दुआ या दुश्मन छा हाल अथव ख़ुशि आहियो ऐं वाइट एस जी क्रीम लॻाए ॾियो सही आहे तव्हां बि सुहिणा थियो बाबा दुश्मननि खे बि पूरो हक़ आहे ओके जी सो बिल्कुलु तव्हां बि ट्राए करे सघो था कॉल कॉलिंग नंबर माशाल्लाह असांजो ॾाढो मसरूफ़ हूंदो आहे सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-8 बिल्कुलु तव्हां कॉल करे सघो था लॻे थो हिते नेटवर्क जेको आहे उहो सफ़ा जाम थी वियो ओके बिल्कुलु तव्हां सभु कॉल कयो अॼु मां चाहियां थी त तव्हांजो इलाही खां वठी जेको आहे न कॉलियूं वठंदमि इलाही मतिलबु कॉलियूं वठंदमि सम्झो था थोरो मुंहिंजी सिंधी थोरी एॾे होॾे थी वेंदी आहे ओके सो हीअ वारी कॉल अचे पई ऐं हीअ वारी कॉल जेको आहे त मां सोचां पई त वठां ठीकु आहे ऐं ॾिसूं था केरु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केरु असां सां गॾु मौजूदु
3: आहे
0: वसीम
3: तोकीर
0: हकीम अली वसीम त चयम न छा हाल आहे वसीम ठीकु आहियो जी मां बि ठीकु आहियां मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया डेली ॿुधंदा आहियो ऐं मूंखे इहो ॿुधायो तव्हांजे एरिया में क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एस या डी स्किन जा प्रोडक्ट मिलंदा कोन
3: बिल्कुलु मिलंदा
0: वरिता अथव कोन वरिता अथव चलो पोइ ईअं चओ न त वठंदासीं अच्छा तव्हां खां सवाल पुछां जेको तव्हां ॿुधो आहे सेगमेंट कोन ॿुधो आहे कई आहे ऐं तव्हां कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा चाचो खाले त ॿुधंदो उहो न ॿुधंदो त मां केरु ॿुधंदो असांजो प्रोग्राम बसि चाचे खाले त चलो चाची खाले त सलाम ॾिना तव्हां वसीम तव्हांजूं मोहबतूं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया लाड़काणे खे तव्हां असांखे जॉइन कयो

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। मक्ता ने वाइट एयोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: गंद फैलाना बहुत आसान है लेकिन समेटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है?
2: सफाई का फोबिया तो एक।
1: मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुमने मुझे नौकर ही अपना समझ लिया।
3: जल्दी है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के तुम्हें
4: पकौड़े बनाते हो ना।

0: के हो तो आवाज भी सिनकी है। GFM 88 नेटवर्क सिनकी आवाज।
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

ट्रेंडी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये चीज तो वाजे है कि आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले।

ओके जी, तो अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें बता दिया करें, आप लोगों की खूबसूरती के लिए है और आप लोगों के हुसन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे तो भाईजान आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो अज्जा मौजूद है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर होगा ना उसे आप डायल करेंगे। और नंबर कौन सा होने वाला है तो जनाब नंबर है 03157990595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाइए। आप लोगों को मैंने पहले बताया तो बिल्कुल कहें कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप रात के टाइम, ऐसा है कि जो ब्यूटी क्रीम होती है ना, वो जाहिर सी बात है वो नाइट क्रीम होती है, तो आप उसे रात के टाइम इस्तेमाल किया करें। लेकिन रात के टाइम इस्तेमाल करने से पहले जो है ना, आप अपना फेस वॉश लाजमी कर लिया करें। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जी, आप अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर रात के टाइम अप्लाई कीजिए। ओके जी, तो हम पता नहीं कहाँ थे। ओके जी, तो टाइम जो है मैं देख रही हूँ तो टाइम बहुत ही जल्दी और तेजी से गुजरता है। पैनल पर कुछ मैसेजेस हैं तो उनको जरा मैं जल्दी से रीड कर लेती हूँ। ये है, तुम जितनी बार उठोगे हम उतनी बार मना लेंगे, ए दोस्त बस तुम अपनी मोहब्बत में किसी को शामिल मत करना। ये बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। और ये हमारे साथी कश्यप कहती है, कश्यप आप ये गाना सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल, गाना सुनाएंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे। नाराज तेकू नहीं करना। और कश्यप कहते आप तेकू मेकू क्यों नहीं आती आपको? भाई तेकू मेकू नहीं आती मुझे, चावन आता है बस, और मैंने कोशिश की है शायद, पर मैं सीख नहीं पाती हूँ, और शायद ऐसा है कि मैंने दिल से कभी ट्राई। और इसके अलावा जो है, अच्छा ये सलाम मिस यू, मैं आके फरमान पर वाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले ओके। इमरान अली बिरवाजो दे, ओके जी ओके, बिल्कुल आप मेरे फरमान पर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर रिजल्ट, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप कहां पर गलती करें कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इरम कहती है, मां घोर थियाम माय डियर दोस्त जानी सिद्रा, व्हाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स देखने में तो बहुत नाइस है जी, बिल्कुल देखने में भी नाइस है और लगाने में उससे भी ज्यादा नाइस है, तो आप ट्राई कीजिएगा। कश्यप कहती है, मेरी कॉल नहीं लग रही, ट्राई कीजिए मेरी जान लग जाएगी, आपने अच्छा हुआ कॉल्स का याद दिला दिया। और ये मेरे साथ ही सिद्रा, आप कभी ना अपनी आवाज में हमें कोई गाना सुनाएं, हमारी ख्वाहिश है। लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई, मैं अपनी आवाज में आपको गाना सुनाऊंगी, लेकिन नेपाल

0: बस तां जो कटजे जो
1: जुहैब
0: जुहैब लाड़काने का कॉल किया ओके जो रहमतपुर में ना ही आई तां पुछा करायो आ चलो तां जे ला असा रहमतपुर में अवेलेबल कराइंदा से शा याद कंदो तां भी चलो जबरदस्त ठीक आ बिल्कुल अवेलेबल कराइंदा सी ऐ मुता तां मके यो बुधा ता तां के सने प्रोग्राम ने नालो छी दो

0: वालेकुम सलाम शाह कॉलोनी का
1: अगर मौजूद आहे प्रोग्राम ॿुधो पिया
0: जी जी बिल्कुलु ॿुधो पिया प्रोग्राम
1: अच्छा मूंखे ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम जो नालो अचे थो तव्हांखे ओके ज़बरदस्त इस्तेमालु करण जे बारे में सोचो अथव चलो सेगमेंट ॿुधो अथव अॼु सच बोलना मना अथव सच ॻाल्हाईंदव त माना फासी वेंदो सवाल पुछांव तव्हां खां अच्छा टॉपिक तव्हांजे लाइ सवाल इहो आहे मूं वटि पंहिंजे अखि लिकाइण लाइ तव्हां ॿार वञी लहे कयो त मां सन ग्लासिस पाता आहिनि पर हालांकि सच आहे त तव्हांजे अखियुनि जे हेठां डार्क सर्कल्स अची विया आहिनि ईअं कॾहिं कयो अथव तव्हां यूज़ कया आहिनि माना इहा हाय या न वेरी नाइस वेरी नाइस कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा
0: असांजो प्यारो नौजवान प्रोग्राम ॿुधे थो हुनखे खोड़ सारा सलाम
1: मुंहिंजो
0: भाउ इनायत लाइ ॿुधे थो हुनखे खोड़ सारा सलाम ऐं जेके बि सभु ॿुधंदा आहिनि तव्हांखे तव्हांजी टीम खे खोड़ सारा सलाम
1: चलो थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई मोहबतूं आवाज़ूं
0: ओके
1: थैंक यू

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम। कितना कॉल किया
1: अलीजा बनाया
0: अलीजा? कितना कॉल कही तो अलीजा? ओ माई अजो अलीजा थोड़ो नेटवर्क खराब है। अलीजा मोबाइल जो नेटवर्क खराब है। ओके सो अलीजा तमाम बेरे ट्राउ क्यों ना खा अलावा हि सॉन्ग जंहिंजी फरमाइश असांखे कानून तव्हांखे न बाबा सभु हिकु जुड़ायो पर हीउ जेको माण्हू क्रिसमस सां गाने जी फरमाइश कंदो न दिलि चवंदी आहे हुनजो हलाए मुबारक अथव। ठीकु आहियो माशाल्लाह। प्रोग्राम ॿुधो पिया? खैर मुबारक खैर मुबारक। अच्छा मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो ड्रॉप थी ओके सो कॉलिंग नंबर 0333221322 एंड 88 ही

0: अच्छा डेली हाँ मुझे प्रोग्राम जो जी तवा के खबर पई तो बाजी केड़न प्रोडक्ट के बारे में बुधाई थी अच्छा तवा का एकड़ो सवाल पूछा जिंदगी में क्या इलाही कयो तव या थोड़ी कयो तव
1: बटरी
0: कयो तव पो ई आही तवा सा करे तवा सोचो ते जका ही क्रीम मुखे असर दिनो आ त बस याद ही ता उन क्रीम जे तर जिंदगी में चेंज भी जरूरी होंगे तुम चेंज कर क्रीम के जरूर जरूर जरूर इनशाला इनशाला कड़े दोस्त जी जी ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कर ओके जी राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वाकई जिंदगी में चेंज होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर तुम अभी एकड़ी क्रीम ते टिकी वेठा हो तो ये नक्यो बाबा मां बुधाएं थी जिन क्रीम के बारे में तुम जरूर ट्राई कर दो अगर तुम जो ना चाहो था तो बाबा असा ब्यूटी क्रीम हाँ गर्मी में ना हणी सकूँ तुम्हारी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो तुम्हारे लिए व्हाइट एस की जो लवली क्रीम अव ना वह सफा परफेक्ट अव तुम जरूर ट्राई कर दो ही वाली एकड़ी बस लास्ट कॉल वी तो लास्ट कॉलर कड़े से गड मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो ओके अभी कॉल लगी हुई तुम्हारी शाल अव खुश आयो अच्छा अलीजा मानू पुछन पाया तो अलीजा की कॉल कि लगी वी रोज रोज उनके ट्रिक बुधायो
2: बस लगी वेंदी आ ट्राई कंदा आयो
0: ट्राई कंदा तो लगी वेंदी आ ब्या मतलब कि ब्या ट्राई ना कंदा जण उनन जी पुछन दी लगे
2: बिल्कुल वो बताए कंदा आन पर किस्मत जी गन दिया
0: ना काई ट्रिक तो हुंदी आ मुखे लगे तो मुखे लगे तो का ट्रिक आ है
2: ना को ट्रिक तो
0: मैं प्रोडक्ट बता कोई भी जके बुधाया थी या ना सोचो पया
2: अच्छा
0: वरतो तब
2: अन्या ना वरतो
0: मुखे यो बच्चा मंदा अलीजा एक का क्रीम लगाई हो जे
2: बड़ी
0: कदे भी का क्रीम कौन लगाई तव कदे भी न लगाई तई या का क्रीम दिसी करे ता जी दिल सही हो जे तई ई जे करे या क्रीम हणा
2: या वाइट एच वारी
0: दिल सही पई हणा डी स्किन के दिसी करे न तो दिल सही ई छो डी स्किन बेचारे रोई दे मखे अलीजा इग्नोर कर डी स्किन के इग्नोर न कयो बाबा ये डाडी भली तव क्रीम बिल्कुल नेता के वेठी दीजो तुम व्हाइटिश लगाजो वरी सही बात कौल कई सुठी।

माशा अलीज़ा सां ॻाल्हाए करे इलाही ख़ुशी थींदी आहे. अलीज़ा थी माशा लिसनर आहे. टाइम सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे पियो. ऐं हा, वाकई तव्हांजे कुझु माण्हुनि जी क़िस्मत थोरी कुझु माण्हुनि जी क़िस्मत ख़राब थोरी, पर जंहिंजी थोरी हुन कनि, छो त बाबा दुआ कंदा की नेठि तव्हांजो बि ॾींहुं ईंदो, तव्हांजो बि वारो ईंदो, अपना टाइम आएगा ज़रूर. और इहे कंहिं अदी जी और अनुष्का रोशनी

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझ हद फरियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।
5: विचो भर में ईरान जूं कामयाबियूं ख़िते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि। नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पारेसरनि जो हक़ आहे। आबराह हरमुज़ जे इस्तेमाल जे लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई विच ओभर ऐं आबराह हरमुज़ बाबति 10 स्ट्रेटजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं। मुस्तफ़ा खामनाई चयो आहे त ख़िते में अदम तहफ़ जो वॾो कारण अमेरिकी फ़ौजनि जी मौजूदगी आहे। अमेरिका ख़िते जे मुल्क़नि खे सलामतीअ जी ज़मानत ॾियण खां बि क़ासिर आहे। नार ऐं उमानी समुंड ते असां ऐं पारेसरनि जो गॾियल हक़ आहे। नार में दुश्मन परॾेहनि जी का बि ज़रूरत न आहे। आबराह हरमुज़ ते नओं निज़ाम लागू करे ख़िते जे अवाम खे सुकून ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी। आबराह हरमुज़ ते नए हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी अवाम बे ख़ुश।
4: तहरान द्रेह बिना कंध झुकाए सभु शिकस्त या पोइती अटण न आहे। ईरान खान अमरीकी से जो मक़सद क़ौम जे हक़ आहे। ईरानी परॾेही मुनादियूं असांजा मुनाराणा आहिनि। विहण ते मजबूर ईरान
5: ट्रंप पारां रद्द करण बाद आलमी मार्केट 100 बैरल थी वियो। कचो फी बैरल नवां वधी वियो। तेल जी क़ीमतुनि में वाधा वारो
4: ईरान खां 15 मई तर्जुमान मौजूदु पहुचंदो। सांग ऐं दावत ते रहियो आहे।

पंजाब के जिले टोबाटेक सिंह में एमपीए की उताकत फायरिंग चार जना कतल एमपीए सरदार अयूब समेत टे जना मरणी एमपीए के जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल कर पुलिस हथियारबंदन जो टारगेट एमपीए हो जांच कर रहा है।

0: हारो जख्मी थी गाड़ी रुखसाना गुम है पुलिस चवण है मामले की जांच कई पे वजे निगरी की गोला भी जारी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, 1.6

0: पागल। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइट का मिनट में फॉले स्किन और फ्रेश ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: क्लिनिक।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: है अमेरिका खिते के मुल्क के सलामती की जमानत दियण का भी कासिर है। नार ए ओमानी समुद थे असा ए पारेसरन जो गदल हक है। नार में दुश्मन परदेहन की का भी जरूरत ना है। आबना हरमुस ते नव निजाम लागू करे खिते के आवाम के सुकून ए तरक्की की जमानत दई सके थी। आबना हरमुस ते नए निजाम के नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फायदन ते ईरानी आवाम भी खुशी जो इजहार कंदो। तेहरान दुश्मन आडो कदें भी कंध न झुकाइंदो। गालन जो मकसद शिकस्त जा पोते हटन ना है। ईरानी सदर मसूद पेजिशियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब दींदे चयो है त गालन जो मकसद कौम जे हकन जी हासिलात ए कौमी मुफादन जो दिफा है। ईरानी परदेह वजारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो है त अमेरिका के मुनासिब तजवीजू डियूं हुयूं। ईरान जायज हक घुरी रहियो है। असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवारा आहिनि। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो। सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% वाध बाद ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकिरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरकरार। अमेरिकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परदेही तर्जुमान मुजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमेरिकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि आईटी ऐं टेलीकॉम बाबति इजलास। गिलगित ऐं आज़ाद कश्मीर में आसान ख़िदमत मर्कज़ क़ाइम करण जे लाइ कम तेज़ करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आईटी शोबे खे हथी वठाइण ऐं बरामदात वधाइण पहिरीं तरजीह आहे। नौजवाननि जी आईटी जे हवाले सां महारत मां भरपूर फ़ाइदो वठणु घुर्जे। आसान ख़िदमत मर्कज़नि बाबति सूबो आईटी जे शोबे में शहरी ऐं बहराड़ीअ जे इलाइक़नि में फ़र्क़ खे ख़तम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: प्यारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर अधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध GAF की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां बिदारी का चीज में आहे सकी करो।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बी और जदीद में

0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश का जैसे के ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
1: बैंक अलबीत रिश्ता भरोसे का
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कर नहीं का चीज में आहे लकी करो नहीं।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट से हमलों के अंदर दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई जो वक्त महफूज रखू था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से वाजह कर छो अकवान नाजिम अल उमूर के परदेही ऑफिस तलवी। बन्नू में पुलिस पोस्ट ते दहशतगर्दन हमले लाए अफगान सरजमीन जी इस्तेमाल ते सख्त एहतजाज। दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन जी इस्तेमाल ते घटती भी जाहिर। परदेही तर्जमान जांच शाहिदन मां साबित थियो आहे त बन्नू में पुलिस पोस्ट ते हमले जी रथाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन कई। गडल कॉमन जी रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तनजीमन की मौजूदगी जो साबितियूं आहिन। अफगान तालिबान खारिजियन हिन्दुस्तानी फितने दाइश खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार डींदे रद्द कर छो। ईरान से हमल जो चिताव समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप है त ईरान गेम खेली रो है पर हाँ खेस घड़ी डर न डी वी। ईरान जो रिचार यूरेनियम मलबे हेठा दफन है जैं तई जल्द पहुंची वेंदी। कदें भी नए चो त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म थी वही है। कुछ हदफ रहल आन बिन हफ्त अंदर हमला कर सकूं था। विच ओवर में ईरान जो कामयाबियों खिते दुनिया में नए निजाम जो रस्तो खोले रही आन। नारवारन समुंडन ते रुगो ईरान पाड़े सीरियन जो हक है। अपना हुरमुज के इस्तेमाल लाए दुश्मन के मिलियल बुनियादन जो खात्मो जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई विच ओवर अपना हुरमुज बाबत 10 स्ट्रेटेजिक तजवीजू जारी कर छ्यू। मुश्तबा खामनाई है त खिते में अदम तहफुज जो वो कारण अमरीकी फौजियों की मौजूदगी है। अमरीका खिते के मुल्क के सलामती जी जमानत डेण का भी कासिर है। नार उमानी समुंड ते असा पाड़े सीरियन जो गड़ियल हक है। नार में दुश्मन परदेहन की का भी जरूरत ना है। अपना हुरमुज ते नव निजाम लागू करे खिते जी अवाम के सुकून तरक्की जी जमानत दई सकजे थी। अपना हुरमुज ते नए निजाम के नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फायदन ते ईरानी अवाम भी खुशी जो इजहार कंदो। तेहरान दुश्मन आडो कदें भी कंध न चुकाइंदो। गालियों जो मकसद शिकस्त या पोते हटण ना है। ईरानी सदर मसूद पशकियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब डींदे चयो आहे त गालियों जो मकसद कौम जे हकन जी असलात कौमी मफादन जो दिफा है। ईरानी परदेही वजारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका के मुनासिब तजवीजू डिनियूं हुयूं। ईरान जायज हक घुरी रो है। असाजा मुतालबा मुनासिब ए जिम्मेवाराना आहिनि। विहण ते मजबूर कयो वियो त ईरान जरूर विढ़ंदो।

सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 300 किलो वाध बाद ब्रेंट तेल 105 डॉलर ते फी

0: बैरल थी वियो अमेरिका में विक्रो थींदड़ कच्चो तेल भी महांगो फी बैरल 99 डॉलर का वधी वियो। अमरीकी सदर 13 खां 15 मई ताई चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारा तस्दीक। चीनी परडेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो, सदर शी जिनपिंग ऐं बियनि सां मुलाकातूं कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शहीदन के भेटा पेश करण वारो ठहराउ सिंध असेंबली मां यक राय मंजूर। ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरी ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया। भारत जे हरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादी खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं शिकस्त डि॒नी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहिद हुई। भारत जंगबंदी लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। इस्लामाबाद में
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी में मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: असांजा पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ा पेश कयो।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हाय

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88.88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो। हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाठा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तरस थोड़ो तरस थोड़ो तरस आण्या साड़ी आण्या पर्स
1: मौका चलत वठी अच नर्स मौका चलत वठी अच नर्स
0: थोड़ो तरस थोड़ो तरस
1: मौका चलत वठी अच
0: नर्स
1: मौका चलत वठी अच नर्स
0: थोड़ो तरस आण्या नर्स

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज नेटवर्क जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: छाड़ा उते गालेंदे सिंध जे वडे वजीर मुराद अली शाह जो चवण हो त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज के बहादुरी ते भेटा पेश कया थो। पाकिस्तानी शाहीनन दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया। भारत जे गुरूर राफेल के बे मिट्टी जो ढेर बनायो वयो। भारत जा 77 का वधिक ड्रोन्स किराया वया। भारत शहरी आबादी के निशानो बनायो जैसा आम शहरी शहीद थे। पाकिस्तान भारत खिलाफ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ए 72 शिकस्त डिनी। कौम वे दुश्मन खिलाफ मुतहद हुई। भारत जंग बंदी लाए अमरीकी सदर के चयो हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ बचत मुहिम में वधिक बिन हफ्तन की वाद करे छी। बचत मुहिम हाँ 15 जून ताई जारी रहंदी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मंसूबो नाकाम। बलोचिस्तान

मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना थे वे वजीर मुराद अली शाह की वजाहत सहाफिन के सवाल जो जवाब दींदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चवण हो तो मुझे खानदान जो जैसे को मानू पास थो है तो नालो बुधा बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना थो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कंदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दई छी। उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान डेण लाय तैयारी करने की भी सलाह। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है तो फेल उम्मीदवार शिकायत लाय राबतो कन एहतजाज का पासो कन बी सूरत में कार्रवाई कई वी। फेल थींदड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाय तैयारी कन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंजी इम्तिहानी अमल में शफाफियत मेरिट ईमानदारी के यकीनी बनाने लाय हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

हुसैन वधो के इरसा में सिंध जो मेंबर मुकरर करे छो। एहसान लिगारी जी इस्तीफा सबब टिन महीनन का इरसा में सिंध जे मेंबर जी सीट खाली पयल हुई। आबी वसीलन वाले वफाकी वजारत शफकत विधो जी मुकररी जो नोटिफिकेशन जारी करे छो। बिरासिटी में औरत पांजी देर सा गड़जी मुड़स के मुबैना तौर जहर डेई कतल करे छो। घर की पेटी में नौजवान जो बडी पुरानो लाशत गोठ याकूब हकड़ो में मुबैना कतल थियल नौजवान रहमान हकड़ो की जाल के पकड़े पुलिस हवाले करे छो। मकतूल जो भाव सईद हकड़ो फरार वारसन जो चवण हो तो गुलजार कलड़ो जा पांजे देर सईद सा नाजायज लागापा हुआ जैता बिनी गड़जी रहमान हकड़ो के जहर डेई कतल करण बाद लाश घर की पेटी में लिकाय छो। नौजवान जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले।

0: औरत नज़ीरा ज़ख़्मी थी पई बारड़ी रुखसाना गुम आहे वारसन जो बारड़ी जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाज पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच कई पई वञे निंगरीअ जी ॻोल्हा जारी आहे
1: गरीबनि जी हालत राम वर्मा आयो असीं ॿाहूं था ॿधूं इंतज़ामिया खे छा असां या हिन मुल्क में असांजा बचा बि महफ़ूज़ न आहिनि असीं हाणे चऊं त चऊं कंहिंखे असां कंहिंजे तरफ़ ते वञूं असां चई चई इंतज़ामिया खे बार बार असां अपीलूं करे करे तकलीफ़ पिया आहियूं त गुज़ारा मुंहिंजी मासूम मुंहिंजा लाइ जेका आहे हुनखे बाज़ियाबु कराए वञे मुंहिंजी मासूम वही त आख़िरकार वही काथे ज़मीन थी वई आहे को आसमान करी वियो गुज़ारा असीं बार बार अपीलूं करे करे थकिजी पिया आहियूं
0: करमपुर भरसां बगलाणी ऐं जाफरी धुरिन में मेहड़ मां अॻवा थियल उजाला परवीन सोलंगी 28 ॾींहं गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी सघी पुलिस रुगो माइटनि खे आसरा ॾियण में पूरी मासूम निंगरी जी बाज़ियाबी वारसन ऐं सिविल सोसाइटीअ जो एहतिजाज जारी पुलिस जी जोड़ियल GIT बि को नतीजो न ॾिनो मासूम उजाला परवीन जो वालिद प्राइमरी उस्ताद शमस लाइ लुड़क लाड़े वेठो संदसि चवण हो त 28 ॾींहं गुज़री विया आहिनि पर पुलिस रुगो ख़ातिरियूं कराइण में पूरी आहे नियाणी अञा ताईं बाज़ियाब नाहे कराई वई
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: अभी बुधो पिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: छा अव्हा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

அன்னர்ஸ்.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: सजो डी दिसां थी तोके परेशान घुमंदी रही आ पहरियों भेरो मां थी रही आ ही न मुझो भी इयो ही हाल हो।
4: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो होता।

0: ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो।
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास ना है क्यों? वडे वजीर मुराद अली शाह जी वजार साफियन जे सवाल जो जवाब भी दे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो त मुझे खानदान जो जेकरे को मानू पास थियो आहे त नालो बुधायो बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ की लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कदड़ फयाज शहर और रफीउल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी का अगवारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया मेरठ की लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कदड़ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कराया हो। अदालत फयाज शहर और रफीउल्ला कुरैशी की 50,000 रुपये की मचलकन एवज जमानत मंजूर थी।
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट से हमलों कदड़ दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई जो हक में खूज रखू था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से वाजे कर छो अफगान नाजिम उल उमूर के पड़े ऑफिस तलवी बनू में पुलिस पोस्ट से दहशतगर्द हमले लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से सख्त एहतजाज। दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से गणती भी जाहिर पड़े तर्जमान जांच ए शाहिदन में साबित थो बनू में पुलिस पोस्ट से हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन कई। गडियल कौमन की रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमन की मौजूदगी जो साबित अफगान तालिबान खारिजियन हिंदुस्तानी फितने दाइश खिलाफ कार्रवाई करें।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
3: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह शुआओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।
5: हाँ नरम चमक और साफ जिल्द रुगो एक क्रीम की दूरी ते पेश आहे हेमी नेचुरल्स की डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिनमें शामिल आहे SPF 30 सिज के नुकसानकार किरणन का बचा लाए कोजिक एसिड और जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म करन लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आर्बोटिन जेके डियन तुम्हारे चेहरे के कुदरती साफ और चमकदार ग्लो। रोजानो इस्तेमाल करो हेमी नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम और हासिल करो नो ग्लो नो एतमाद। हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस। हेमी नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल्द एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान देह श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, जीएसएखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम रौनक महफिल साण करे आवां जो पैंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदन सां त अवां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा। अल्लाह पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे, जीए एफएम नेटवर्क आहे। अॼु जी तारीख़ आहे 11 मई 2026 ऐं सूमर जी शाम आहे 7:10 एग्ज़ेक्ट टाइम थियो आहे, यानी प्रोग्राम अवां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहिया आहियो। त दोस्तों, तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम में अवांजे लाइ मुख़्तलिफ़ सेगमेंट्स हूंदा आहिनि मूं वटि, ऐं सेगमेंट सां गॾोगॾु प्रोग्राम में अव्हांजी फ़रमाइश बि हूंदी आहे, ऐं अव्हांजी फ़रमाइश सां गॾोगॾु प्रोग्राम में कुझु पैगाम बि हूंदो आहे जेको मुंहिंजे ज़िमे हूंदो आहे अव्हां ताईं पहुचाइण, बिल्कुलु हैमे वारनि जो, छाकाणि त हुननि स्पॉन्सर कयो आहे हीउ शो। त दोस्तो, बिल्कुलु अव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में जेको सेगमेंट आहे उहो आहे अव्हांजे लाइ ॼाण जी खाण, ऐं ॼाण जी खाण सेगमेंट में अॼु सवाल कहिड़ो आहे इहो ॿुधाइण खां पहिरियां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त तव्हां पंहिंजी फ़रमाइश बि ॿुधी सघो था अॼु प्रोग्राम में, पंहिंजा फेवरेट सिंगर्स ॿुधी सघो था एज़ वेल। करणो छा आहे, तव्हांखे सिंपली पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फ़रमाइश कंदो, जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर प्रोग्राम में मां शामिल कंदुसि, ठीकु आहे। सो प्रोग्राम में शामिल कीअं थो थी सघिजे, अवां लाइव कॉल या व्हाट्सएप जे ज़रिए मूंखे जॉइन करे सघो था। नंबर आहे 03000113488, ऐं मैसेज जे ज़रिए बि जॉइन करे सघो था। मैसेज जे लाइ पंहिंजे मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञो, SKR लिखो, स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 ते, यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो, ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ बल्कि फेसबुक खे छॾियोसि तव्हां, ठीकु आहे, GAFM.net ते अची करे तव्हां असांजी वेबसाइट जे ज़रिए प्रोग्राम ॿुधी सघो था। सो जीअं मूं ॻाल्हि कई त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ, तावन कयो आहे हैमे नेचुरल्स वारनि, त हैमे नेचुरल्स वारनि दावा कई आहे त हिननि जी प्रोडक्ट आहे जंहिंमें SPF 30 शामिल आहे, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आरबूटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इनग्रीडियंट्स जेके अवां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। SPF 30 तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो, कॉजिक एसिड इन में जेको शामिल आहे चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो, ऐं ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आरबूटीन इहो वरी अव्हां जे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुल नेचुरल ग्लो ॾे पियो, यानी तव्हांजे चेहरे जी स्किन जेका आहिनि उहा नेचुरल ग्लो करे पई। कुदरती निखार जॾहिं अचे पियो त हर कोई अवां खां इहो ई पियो पुछे त बाबा अव्हांजे चेहरे ते जेको इहो निखार आहे इन जो रास छा आहे, ऐं तव्हां चओ पिया बाबा इहो सॼो कमाल आहे हैमे ब्यूटी जो, बिल्कुल। त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इन जी प्राइस जी मां ॻाल्हि कयां त हिननि ॿुधायो आहे 332-360 रुपीज़ वेरीज करे पई, पर कुझु दुकानदार तव्हांखे 330 में ॾियनि पिया, वरी 340 या 350 या 360 ताईं तव्हांखे इहा हैमे ब्यूटी क्रीम ईज़ीली मिली सघे थी। गॾो गॾु अवां जे शहर जे वेझे स्टोर्स ते स्पेशली शाही बाज़ार जॾहिं अवां वञो पिया त उते तव्हांखे आसानी सां हैमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, ऐं सेकेंडली इन जो हेल्पलाइन नंबर बि आहे, जेकॾहिं अवां जे शहर में अवेलेबल न हुजे त तव्हां सिंपली इन जे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल करे सघो था, ऐं जी इन्हनि खां पुछी सघो था त तव्हां जे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे ब्यूटी क्रीम मौजूद आहे। त इन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03671354 07। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03-36-71-35-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था, ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे, ठीकु आहे, डन थी वियो। सो दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में अच्छा सेल्फीज जे लाइ बि इन्हनि ॿुधायो आहे हैमे ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदड़ आहियो त इन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेके आहिनि असांखे व्हाट्सएप ते तव्हां सेंड कंदो त तव्हां क़ुरानदाज़ी में शामिल थी सघो था, ऐं एवरी वीक जेको आहे क़ुरानदाज़ी कबी आहे सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे। त 500 रुपियनि जो कैश इनाम अवांखे बि मिली सघे थो, पर हाणे करणो छा आहे, तव्हांखे सेल्फियूं तव्हांखे इन वीक मोकिलणियूं आहिनि, ऐं इन वीक जॾहिं अवां सेल्फीस मोकिलींदो न त हुनजी क़ुरानदाज़ी मां कंदुसि सुभाणे 12 तारीख़ आहे, ऐं ख़ैर सां 12-13-14 ते मां हिन जी क़ुरानदाज़ी कंदुसि, ठीकु आहे, यानी थर्सडे ते क़ुरानदाज़ी करे वरी पोइ मां अवांखां हथ ॿधी मोकिलाईंदुसि हिन प्रोग्राम में कुझु ॾींहनि जे लाइ, ठीकु आहे, वरी कुझु ॾींहनि खां बाद में वरी हिन प्रोग्राम में अॻियां अवां सां मुलाक़ात कंदुसि, ठीकु आहे। त थर्सडे ताईं तव्हां धड़ाधड़ पंहिंजूं सेल्फीज़ मोकिलियो त जीअं तव्हांजी उहे सेल्फीज़ मां क़ुरानदाज़ी में शामिल करे सघां, ऐं पोइ थर्सडे ते क़ुरानदाज़ी करे अवां खां पोइ टाटा बाय बाय कयां हिन रौनक महफ़िल में, ठीकु आहे। सो सेल्फी मोकिलण लाइ असांजो व्हाट्सएप नंबर अथव 03000113488
88 ऐं मैसेज भी तव्हां करे सघो था। मैसेज जे लाइ तव्हां एस के आर लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 888 यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो। ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ असांजो फेसबुक पेज आहे GAFM उते अची करे तव्हां असांखे ज्वाइन करे सघो था। सो प्रोग्राम हींअर तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां जे लाइ प्ले कयो आहे। तव्हां ही कलाम ॿुधो पर कलाम प्ले करण खां पहिरियां अवां जे लाइ जेका अॼु ॼाण जी खाट सेगमेंट में अवां जे लाइ सवाल आंदो आहे तमामु सवलो ऐं दिलचस्प सवाल आहे, दिलचस्प आहे, ठीकु आहे। 500 रुपियनि जो तव्हांखे केश इनाम ॾियणो आहे। तव्हां इहो ॿुधाईंदा त जेको 500 रुपियनि जो आहे नोट, पाकिस्तानी नोट, उन जे पुठियां छाजी तस्वीर छपियल आहे, ठीकु आहे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, द पिक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ 500 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट इज, ठीक है, उहा तव्हांखे पिक्चर ॿुधाइणी आहे, कहिड़ी पिक्चर छपियल आहे पाकिस्तानी नोट 500 रुपियनि जे पुठियां, तव्हां हिनजो जवाब ॾींदव ऐं प्रोग्राम में शामिल थी। ऐं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मां अवां सां इन सां रेलिवेंट थोरी एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कंदुसि त जीअं अवांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए। त मूंसां गॾु कनेक्ट रहिजो इन रौनक महफ़िल में। हींअर अवां जे लाइ तमामु प्यारो प्यारो कलाम प्ले कयो आहे। तव्हां कलाम ॿुधो ऐं प्रोग्राम में अवां व्हाट्सएप जे ज़रिए मूंखे वॉइस नोट्स बि वध खां वध सेंड कंदव। असांजो व्हाट्सएप नंबर आहे 03000134888। ऐं अलहमदुल्ला मां हीअं व्हाट्सएप जीअं खोलियो आहे त तव्हां जो जेके आहिनि, अच्छा हीअ सेल्फी आहे, हा सेल्फियूं अचणु शुरू थी वियूं आहिनि। ऐं माशाल्लाह यार, महिरबानी करे नालो ज़रूर लिखो यार, नालो न लिखंदव न त मूंखे ख़बर कीअं पवंदी त हीअ सेल्फी कंहिंजी आहे। पर हीउ मूंखे सुञातल लॻे पियो यार, हीउ मूंखे लॻे पियो ग़ुलाम रसूल मरी त न आहे, बिल्कुलु मां सुञातो, सही सुञातो आहे न भाउ, तव्हांखे ॻाढ़ो रुमाल कुले थी पियो आहे ऐं हैमी ब्यूटी क्रीम हथ में आहे, अवां ग़ुलाम रसूल मरी त न आहियो, कंफर्म कयो मूंखे प्लीज़। सो हींअर प्रोग्राम में अवां जे लाइ तमामु प्यारो प्यारो कलाम प्ले कयो आहे। तव्हां कलाम ॿुधो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो।

0: उस रब नु मनाना औखा नहीं, मेरे रब को मनाना तो बहुत आसान है।
1: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर, हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वास से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

0: सो दोस्तों बिल्कुल हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जी तवां गानो बुधियो तमाम प्यारो प्यारो अच्छो तो कुछ वॉइस नोट्स हाने प्रोग्राम में शामिल क्यों पिया जका है प्रोग्राम रौनक महफिल जी हकीकी रौनक आइन अच्छो तो बुधो
1: बबरबा मा गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काठड़ी खांदो गाले आ हेमी ब्यूटी क्रीम जो को सो कल टेडी वरतो सी आज वहां दे तस्वीर मोगले सी मके ट्वाल साने यानी कारे रंग ते कपड़ा पाता लाइन मके उम्मीद है ते तस्वीर मा तानी पगो होंदो हेमी बीटी क्रीम जबरदस्त क्रीम चेहरे के सुटो प्यारो खूबसूरत बनाए तो दोस्त है इम्तियाज अली बंगलानी राणो ब्रोई निंडड़ो आसिफ अली तवाजो प्रोग्राम बुधे पियो चाचड़ उनखा पो बिलावल निंडड़ो प्रोग्राम बुधे पियो सुभान अल्लाह सुभान जको ऐसो तवाजो प्रोग्राम बुधे पियो के अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज अदा तांजी मेहरबानी भा तांजी सेल्फी बिल्कुल मुंह ताई पौती इमाम निनो भमरो साहब जी पे सवाल जो जवाब आए ओके भा तांजो जवाब नोट क्यों है एकड़ो ही वॉइस नोट
2: وعلیکم بابر بادشاہ اللہ خوش ہے خیرات میں سے سیہ تانجو پرام اللہ کے سان دل دے گلایا بار بار میں بیٹی کے اندر کلام ٹھایا

0: ஆஹ் வாரம் அமைஞ்ச தோஸ்தாயின் ஹாஃபிஸ் லக்ஷ்மீர் மண்டலு ஷா மேரா மண்டலு சாரங் டெலு முகமது காசிம் டெலு ஹாஃபிஸ் ஜான் முகமது அபடகே கோட் சார் அஸ்லாம் ரேஸ் டெலு ஆய் பபர் பாபா கே ஃபர்தானா பர்வின் ஜு கலாம் புத்ரா ஜு முஜி ஹத் ஜோர மால பே கே கே நடி ஜா முஜி பியார் வா பபர் பா தா ஜி பெரோகிராம் சா வரா தா மேடம் கரம் ஜி பெரோகிராம் ஜி சலன் ஜி கால் பே கே பபர் பா மெஹர்பானி கரே பெரோகிராம் ந சலியோ யார ச பா ஜி பெரோகிராம் ரோஜ் புதனா ஆயம்
1: हाँ यार यह न्यूज अथव बाकी अल्लाह खैर कद इनशाला कुछ डी बाद में वरी प्रोग्राम शुरू कदी पर अव जो सेल्फीज जीन्दी तो मजो थी वो अवं की फरमाइश के कोशिश क्या भी प्रोग्राम में शामिल करण की अच्छा इन जस्ट अच्छा कुछ मैसेज जी इन कुछ देर पे मोकिल भराय मेहरबानी रीसेंट कर व्हाट्सएप की रिफ्रेश किया है दैट्स वाई तवा वॉइस नोट्स जी सही तरह न पौता है ही वॉइस नोट
2: السلام علیکم اوایا نظر کو سفرام بلوچستان پروام بہترین ہے میڈم نکلو بیٹی کریم تمام بہترین ایسا لگا رہے ائیو بہترین رزلٹ ہے چہرہ تمام بہترین کرے تو اوایا نظر کو سو
1: اوکے ادا نظیر کھوسو صاحب تاں جی مہربانی تاں پروگرام میں شامل تھیا اکڑو ہی وائس نوٹ ائی ہی چھاپے چون لیٹس سی
3: السلام علیکم اداد چال ٹھیک ہے ادا ملارکانی کا کشف زہرا تھی گلا ادا تاں جو پروگرام تمام سٹھو ہوا بیسٹ ہے اساں تاں جو پروگرام تمام سٹھو لگندو ہے تاں جی جکا چوائز ہے او تاں جی سونگ تمام سٹھا تاں بدھائندا ہے تاں جی وڈی وڈی مہربانی ہیمن نیچرز ڈائمنڈ گلو بیٹی کریم بھی تمام سٹھی ہے وا تمام سٹھی ہے ادا اساں جی ریکویسٹ ہے اساں کی کو सुठो मुमताज लाशारी जो सॉन्ग ॿुधायो अगरि तव्हां वॉइस बि न कंदा आहियो असांजा प्ले ऐं तव्हांजी डिलीवर थींदा आहिनि पर तव्हां सीन न आहियो कंदा पोइ इहे बि प्ले कंदा कयो थैंक्यू
1: ऑल दैट अदी कश्यप थैंक यू सो मच तव्हां ज्वाइन कयो प्रोग्राम में ऐं ईअं पियो थिए तव्हां जॾहिं वॉइस नोट्स कयो पियो न त असांजो जेको प्रोग्राम आहे न उहो कॾहिं कॾहिं रिकॉर्डिड हले पियो त हिन जे लाइ उहे मिस पिया थी वञनि बहरहाल मां गानो प्ले कयां पियो तमामु प्यारो हींअर फरज़ाना परवेज़ जी आवाज़ में ठीकु आहे उहो ॿुधजो देन मां तव्हांजी फरमाइश ते मुमताज़ लाशारी बि प्ले कंदुसि ठीकु आहे थैंक यू हिकिड़ो ही वॉइस नोट
4: बाबा जानी अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम अदर सर केड़ा हाल ख़ुशि आहियो त बि सही आहे मां ज़वार मोहम्मद बचल शंपण में ॻाल्हायां नारो आहे 186 अदर ऐं तव्हांजो प्रोग्राम माशाला तमामु बहितरीन तमामु सुठो पियो हले सर हेमी ब्यूटी क्रीम जी तव्हां सां प्रोग्राम हले पियो हेमी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल असां कयूं पिया ऐं असां ख़रीद कयो आहे तव्हां प्रोग्राम छॾियो पिया इहा सुठी ॻाल्हि त न आहे सर त हेमी ब्यूटी वारनि खे बि इहा गुज़ारिश आहे त प्रोग्राम खे वधायो ऐं प्रोग्राम ख़तमु न कयो फ़िलहालु सर असां हाणे दोस्त ऐं वठनि पिया हेमी ब्यूटी क्रीम इनशाला तव्हांजे तस्वीरूं जाम ईंदियूं हाणे सर ऐं कुझु दोस्तनि खे हथु चाहियां थो अली मोहम्मद इमाम नंबर फ़क़ीर बंबरो अलवर अलाशारी ऐं हिन खां अलावा हाफिज़ लखमी ॾिलू सैद इमदाद अली शाह सैद गुलाब अली शाह
1: सेल्फी मोकिली आहे अच्छा इहो फीडबैक ॾियण जे लाइ तव्हां हिन जे नंबर ते कॉल कयो ठीकु आहे इहो फीडबैक तव्हां जेको मूंखे ॾिनो न उहो हिननि खे ॾियो तव्हां हिन जो नंबर आहे 03671354 07 जी हा नंबर वंस अगेन रिपीट कयां पियो 03-3631-4070 तव्हां हींअर ई कॉल करे हिननि खे फीडबैक धड़ाधड़ ॾियो
5: ज़िंदगी गुज़रे उमीद आहे त ख़ुशि हूंदो ख़ुशहाल हूंदो मां हेमी ब्यूटी क्रीम ते थोरी शहरी चवंदुमि त भला हेमी ब्यूटी क्रीम छो नथा चेहरे खे लॻायो दाग धबन खे यार दाग धबन खे यार छो नथा डोड़े भॼायो हिमी बीटी क्रीम चेहरे ते छो नथा लॻायो कुझु त वफ़ा अब्दुल वहीद जो वठो यार चवणो कुझु त बाबर शेख साहब जो वठो यार चवणो तव्हांखे कोई नुक़सान न दाग दबन खे थी आहे बाबर साहब अॼु असांखे को नगमो सुठो जलाल चांड जो ॿुधरे जो मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर मुंहिंजो तुई मुंहिंजो भाटो आया त मुंहिंजो तुई आस बि चाचड़ा लाड़कानी खऊं बाक़ी जेके ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जत पारां सॼे सत खे सलाम
1: वालेकुम असलाम ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त वहीद भाउ ज़बरदस्त आहे अचो त तव्हांखे गानो ॿुधायां फरज़ाना परवीन जी आवाज़ में न रौनक महफ़िल में सवाल अथव प्रोग्राम में त 500 रुपियनि वारो जेको नोट आहे न उन जे पुठियां छा छपियल आहे तव्हां पंहिंजो व्हाट्सएप नंबर आहे 0888

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: All dear listeners, बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम में बाबर शेख आया असां गॾु ऐं रौनक महफ़िल प्रोग्राम में हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में अव्हांखे ॿुधायो वञे पियो अबाउट द प्रोडक्ट छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे त हिन जी स्पॉन्सरशिप बि जेका आहिनि मां अव्हां ताईं पहुचायां पियो ऐं हिन जो पैगाम अव्हां ताईं कन्वे कयां पियो ऐं इहो पैगाम जेको हिन जो आहे न तमामु घणो फ़ाइदे वारो अव्हां जे लाइ साबित थी सघे पियो जेकॾहिं अव्हां इन जी प्रोडक्ट ते थोरो ग़ौर वीचार करे इस्तेमालु करे सघो छाकाणि त जिन जिन इस्तेमालु कई आहे उन्हनि इहो ई फीडबैक ॾिनो आहे त बाबर भाउ वाह वाह वाह वाह ऐं वाह वाह हेमे ब्यूटी त वाह वाह आहे त बिल्कुलु दोस्तो तव्हां बि हेमे ब्यूटी जो फ़ाइदो हासिल करे सघो था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो तव्हांजे चेहरे ते दाग धब्बा मोहिड़ा छावां झुरियूं छुरियूं न बल्कि झुरियूं जी हा ऐं डार्क सर्कल्स अगरि आहिनि उहे तव्हांजा दूर थी सघनि था विद इन 7 डेज़ तव्हांखे जेको हिन जो रिज़ल्ट मिलंदो न तव्हां चवंदा बाबर भाउ या हेमे आहे या कुझु जादू आहे मां चवंदो आहियां पाण ॼाणो हेमे अथव इस्तेमालु करे ॾिसो रिज़ल्ट कीअं थो मिलेव सो वधीक तव्हां हिन मुताबिक का बि मालूमात तव्हांखे घुर्जे त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 कुझु मैसेज आहिनि बाबर ब्रो हाउ आर यू आई एम फरजाना बलोच एंड आई एम एंजॉइंग योर प्रोग्राम बाबर ब्रो थैंक यू फरजाना सिस एंड यू आर एंजॉइंग द शो एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट हेमे ब्यूटी प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल सो कुझु वॉइस नोट्स बि आहिनि ऐं कुझु मैसेजेस बि आहिनि ही मैसेज छा पिया चवनि त ओके मैं नूर अली खास के लिए विलेज डॉक्टर यार मोहम्मद झांझी से एंड आपके क्वेश्चन का आंसर है 500 रुपए के नोट के पीछे 500 रुपए के अल्फाज साथ भावल दीन जकरिया का चलें जी देखते हैं आपने जवाब सही दिया है या नहीं सो अलाए कड़ो 500 जो नोट डिठो आया दे मेरा लिखो ही वॉइस नोट आए बुधो
2: अल्लाह पाक तवाके बाबर साईं ऐं तव्हांजी पूरी टीम खे 5-12 जे सदिके आबाद रखे ज़वार मोहम्मद बचल छंबाणी अली हसन बाबो सोनड़ो भाउ सोना खान मस्तोई वफ़ा वईद जतोई ऐं जेकी बि नज़ीर अहमद मंगरियो साहब जेकी संगत ॿुधे थी पारां सैयद गुलाब अली शाह बुखारी तरफ़ां अस्सलाम अलैकुम या अली मदद ऐं शमन जो प्रोग्राम गानड़ो जेको आसो उहो हली रहियो आहे मुंहिंजो सॼण साईं ज़ोर आहे इहो ॿुधी रहियो आहियां तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी अली अली
1: अली अली अदा तव्हांजी महिरबानी बाकी यार इहो शम जो प्ले त न कयो मां अलाए कहिड़ो थो भाउ असांजो प्रोग्राम ॿुधे असांजो गुलाबड़ो अलाए कहिड़ो थो ॿुधे शाह साहब तव्हांजी महिरबानी थैंक यू अदा हिकिड़ो ही वॉइस नोट अचो त ॿुधूं छा पिया चवनि
3: अस्सलाम वालेकुम यार मदद बाबर भाउ मां अब्दुल शहर पियो ॻाल्हायां अकरी चौधरी आहियां ऐं मुंहिंजो बाबा बि ॿुधे पियो अली गुलाब शहर त बाबर भाउ तव्हां जेको सवाल कयो आहे त 500 जे नोट जे पोयां कहिड़ी शइ छपियल आहे त उन जे पोयां जेका छपियल आहे तस्वीर उहा आहे बादशाही मस्जिद त असांखे हिन प्रोग्राम में लाज़मी एड कयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी
1: ठीकु आहे दादा तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया तव्हां ऐं बिल्कुलु तव्हांखे एड करे छॾियो आहे ॿियो हुकुम कयो भाउ बाक़ी हेमे जे बारे में तव्हां कुझु ॿुधायो कोन वेल इट्स ओके हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि अचो त ॿुधूं
4: अस्सलाम वालेकुम मीरपुर खास गोठ वली मोहम्मद रिंद खां इम्तियाज़ अली बंगलाणी बाबर भाउ हेमे ब्यूटी क्रीम बहितरीन आहे चेहरे जी रौनक ऐं ॻाइण वॼाइण जो सेगमेंट न आहे तव्हांखे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में मारवाड़ी में लफ़्ज़ ॿुधायां थो

0: सुठो पवर भा मुझा कुछ दोस्त काठड़ी का गुलाम रसूल मरील विलेजवान शाम यूसी विके संगी डिस्ट्रिक्ट लाड़कण का असो काबिल एतराम मोहतरमा अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली मुमताज अली मिराली लाड़काने का आसिफ अली चाचर प्रोग्राम बुधी रो शराज अली बंगलानी मोहन बिलावल बंगलानी दिलावर अली बंगलानी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम माला अली मदद भा बंगलानी साहब ताजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल था थैंक यू अदा लिसन्स बिल्कुल तवांगे बुधाई तो हला त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका है इन में जेको कॉजिक एसिड शामिल आई तवारे चेहरे ता दाग धबा निशाना जो खात्मो करे सके तो विद इन 7 डेज तवा के जो रिजल्ट जेको मिलंदो न तवा पाण चींदा बाबर भा हेमे आयो मां भी यो ही पे चवा बाबा हेमे तो अच्छा वर्षण वक्त तवा शाही बाजार तवा जदी मने पिया त तवा के उदे सुठी कॉस्मेटिक्स वाई वट आसानी सा मिली सके पई वधिक मालूमात लाए तवा इन जे नंबर ते कॉल कंदो नंबर आ ही 03671 3540 7 जी हां 03-36-71-35-470 इन नंबर से तुम कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम के बारे में इनका मालूमात वठी सको था आई जी पुछी सको था तो तुम्हारे शहर जे वेझे केड़े स्टोर थे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है ठीक है सो हि प्रोग्राम में हमारे शामिल किया ममताज लाशारी की आवाज में प्यारे प्यारे गानों अच्छा तो बुधूं पा इन रौनक महफिल में

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिक नओ ग्लो हिक नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: सो लिसनर्स बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज़ में यार जबरदस्त कलाम अवां ॿुधियो मैडम ही मखण दा चाणा उमीद आहे अव्हांखे पसंद आयो हूंदो सो अव्हां जा कुझु मैसेजेस रहियल आहिनि जेके शामिल करे प्रोग्राम में बाकी 12 मिंट बचिया आहिनि ऐं पोइ अव्हां खां मोकिलियां पियो चनेसर सोलंकी ॻोठ वासन दलग मीरपुर ख़ासि खां जवाबु आहे ओके अदा गुलाब लगारी ॻोठ बशाम खान रिंद से गाज़ी खान रिंद चाचा मंठा रिंद रिज़वान अली रिंद फैज़ान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनैन ज़हरा आपका शो अच्छा चल रहा है आपकी कंपेयरिंग अच्छी है आपका आवाज अच्छा है पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ यू आर वेलकम भाई आपको और आपकी पूरी जो है रिंद ब्रादरी को वेलकम कहते हैं पूरी फैमिली को हम वेलकम कहते हैं ठीक है आपका बहुत शुक्रिया सो झुलेखा खालिक लाशारी जवाब आए बादशाह मस्जिद ओके भा ॾिसूं पिया ऐं तनेसर सोलंगी साहब अदा तव्हां भई अली मदद वालेकुम असलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद बिल्कुल ठीक ठाक बाबर भाई आपने FM कैसे ज्वाइन किया आपका इंटरेस्ट कैसा है FM में ये बताएं हमें टॉपिक का जवाब है ओके एंड कोई सॉन्ग तो सुनाए सूफान अबड़ो का आज आपको मेरी फरमाइश चलानी पड़ेगी आई विल ट्राई अदा

0: सो दोस्तों अजादर भाई अजादर भाई ये जो है बातें फिर कभी, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सो आइए कुछ वॉइस नोट्स इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। और ये हमारे साथ कौन है, ये इन्होंने बिल्ली भेजी है, फिर इन्होंने जो है हंसता हुआ स्मिली भेजा है। इट्स ओके भाई, आप हैं कौन, अपना नाम जरूर लिखा करें। एक ये वॉइस नोट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं।
1: बाबर भा अस्सलाम वालेकुम, बाबर भा माशूक मौलाई पियो ॻाल्हायां शहर बांदी खां। तव्हांजो शो ॿुधी रहियो आहियां, तमामु सुठो हली रहियो आहे। ऐं तव्हांजो सुवाल ॿुधो आहे, सो सुवाल जो जवाबु इहो आहे त 500 जे नोट जे पोयां बादशाही मस्जिद जो ई तस्वीर छापियल आहे। सुवाल जो जवाबु इहो आहे साईं।
0: चलो साईं ठीकु आहे, हिकिड़ो ही वॉइस नोट।
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो। कामरान अली मैसर रफ़ी मैसर खां तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधायां पियो वेठो, ऐं असां सॼी फैमिली तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पई आहे। स्पेशली सलाम साईं इमदाद अली शाह बुखारी खे, जेको तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं ॿी सॼी जेके संगत ॿुधे पई, सॼो जेको ॿुधंदड़ सभिनी खे मां सलाम ॾींदो आहियां, वॾी महिरबानी साईं।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: अच्छा
0: हिननि जो ॿ दफ़ा मैसेज आदा, ॿ दफ़ा मैसेज, सॉरी भा, हिकिड़ो मैसेज हिकिड़े ॾियण जो, ठीकु आहे। सो ही छा पिया चवनि, चवनि पिया नज़ीर अहमद मंगरियो, मोहम्मद सुलेमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल हमीद, फ़क़ीर नूर मोहम्मद भारो, फ़क़ीर शेर मोहम्मद कांधड़ो।

0: आए। वाह साईं वाह, वाह सजण वाह, वाह सजण वाह। तां जे लाइ गानो मां वेंदे वेंदे प्ले कयां पियो, स्पेशली तां मीरा अली बिरादरी जे लाइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं हीउ केरु आहे असां सां गॾु? ही चवनि पिया त तेरी ख़ैरियत का ही ज़िक्र रहता है दुआ में, मसला सिर्फ़ मोहबत का ही नहीं फिकर का भी है। बिल्कुल, आपसे यही इल्तिजा है कि आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखें और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। जा तुझे माफ किया, आगे क्या होता है वो लाइन आपके लिए स्पेशली, ठीक है? सो एक ही वॉइस नोट, आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है इस रौनक महफिल में।
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद गोट शेरमंद मायरन का सैयद गुलाब।
0: अच्छा, ही भी गुलाबड़ो असां जो भा डबल थी वे अदा वॉइस एकड़े जो एकड़ो शामिल थिंदो, ठीक है? एकड़ो ही वॉइस नोट।
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर भान जा, केड़ा हालनी, खुश आयो, तबीयत तवांजी ठीक आहे? शामीर अली चाचड़ पनो अकिल खा गलाए पियो, प्रोग्राम आवाज तमाम बेहतरीन सुठो ला जवाब हले पियो, हेमी बीटी क्रीम सो इस्तेमाल कयां पिया, तमाम बेहतर सुठो रिजल्ट आहे, असां दोस्तन खे चवंदासीं हेमी बीटी क्रीम इस्तेमाल कयां, तमाम बेहतर सुठो आहे, प्रोग्राम आवाज तमाम बेहतरीन, जेके पहिरीं प्यारा दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि खोड़ सारा सलाम।
0: चलो वालेकुम अस्सलाम यार, हाणे ॿ टे कॉलर्स खे शामिल कयां, कॉलर जेके मूंखे कावड़ माना उन्हनि खे तव्हां पहुचाईंदो, बल्कि कॉलर्स जो जॾहिं मां नालो खणंदो आहे न त असांजो सेट जेको आहे न मोबाइल उहो थींदो आहे न ईअं कीअं ईअं कीअं। सो इट्स ओके दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में तकरीबन सतो महीनो आहे यार, ख़ैर सां तव्हां जेके प्यारा लिसनर आहियो मुंहिंजा, अलहमदुल्ला तमामु प्यारा आहियो, ऐं ॿां ॿेली बि आहियो मुंहिंजा हिकिड़े क़िस्म जा, जेके हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि, जॾहिं हैमे जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि न त बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे। ॾिसो स्पॉन्सर शो में असांखे हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे करणो पवंदो आहे, हिन जो मक़सदु इहो कतन कोन्हे त मां तव्हांखे इंसिट्स कयां ऐं तव्हांखे ज़ोर भरियां त न यार इहा इस्तेमालु करणी अथव, न, मां जस्ट हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे कयां पियो। हाणे अवां जे मथां तव्हां हिन जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, अगरि सुठो रिज़ल्ट मिले पियो त तव्हां रुटीन लाइफ में शामिल कयो पिया, नथो मिले त का ज़ोर ज़बरदस्ती कोन्हे, पर सतो महीनो आहे ख़ैर सां ऐं हर को इहो ई ॻाल्हि करे पियो त हैमे जो रिज़ल्ट सुठो मिलियो आहे, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे तव्हां जहिड़ा प्यारा लिसनर्स आहिनि। ऐं जॾहिं ही कहिड़ा ही छा पियो चए, हथ ॿधिया अथई हैमे खे, ठीकु आहे? आपको जो है हैमे खे हथ हलाए छो ॿधिया अथई, आई डोंट नो। अच्छा, हैमे वारनि खे जेको आहे न तव्हां इहो फीडबैक ॾेई सघो था त तव्हांखे प्रोग्राम कीअं लॻियो, सत महीना जेका हुन स्पॉन्सरशिप कई, हुन जी प्रोडक्ट कीअं लॻी, हुन जो हेल्पलाइन नंबर तव्हां नोट करे वठो ऐं कॉल कयो धड़ाधड़। इहो बि चई सघो था बाबा छा आहे छा आहे छा आहे छो स्पॉन्सरशिप जेका आहे ख़तम पई कई वञे। बहरहाल नंबर आहे 0336713547। नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो, 0336713547। तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे हैमे जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था। ऐं दोस्तों बिल्कुलु जेको आहे त जुमेरा ते यानी ख़मीस ते पाण प्रोग्राम में कुरानदाज़ी कंदासीं ऐं ख़मीस ते असांजो आख़िरी प्रोग्राम हूंदो, पोइ कुझु ॾींहनि लाइ माज़रत ख़्वाह हूंदो तव्हां खां। इन जे लाइ ख़मीस ताईं तव्हांजी वधि खां वधि सेल्फीज़ ईंदियूं त पोइ वाह वाह थी वेंदी। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो।
3: विसरे सारो लोक, विसरे सारो लोक, शाल न विसरी तूं, तोखे केॾो मूं सांडियो आहे साम। अस्सलाम वालेकुम बाबर यानी घोट जुड़बी थरपारकर खां वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच। अवां जो प्रोग्राम ॿुधूं पिया हमेशह जीअं अॼु बि लाजवाब पियो हले, तमामु ज़बरदस्त शामिल कयो मोहबतनि जे सफ़र में।
0: चलो अदा तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजो मैसेज मूं शामिल करे छॾियो। त दोस्तो अचूं था अॼु जी जेको आहे त ॼाण जी खां सेगमेंट जी तरफ़। त अॼु जे प्रोग्राम में सवाल मूं रखियो त जेको पाकिस्तानी 500 रुपियनि जो नोट आहे हुन जे पुठियां छा जी तस्वीर छपियल आहे, त सही जवाबु आहे बादशाही मस्जिद, ठीक आहे? द फर्स्ट बैंक नोट जेको आहे न इशू कयो वियो पाकिस्तान में, इहा तव्हां सां एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कयां पियो स्टेट बैंक जे तरफ़ां, उहा तारीख़ आहे 1 अक्टूबर 1948। जी हा, जेका स्टेट बैंक जे तरफ़ां पहिरियों नोट इशू कयो वियो हो उन जी तारीख़ आहे 1 अक्टूबर 1948। ऐं 5 रुपया 10 रुपया ऐं 100 रुपयनि जो जेको आहे न प्रिंटेड कयो वियो थॉमस डी ला रियू एंड कंपनी जी तरफ़ां, ठीक आहे? पहिरियां मतिलब नोट 1 अक्टूबर 1948 में इशू कयो वियो ऐं 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया वारा नोट इशू कया विया हुया, ठीकु आहे? सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या 100 रुपए जो नोट आयो त 100 रुपए जे पुठियां क़ाइदे आज़म रेजिडेंसी छपियल आहे, ऐं जेको 10 रुपया वारो नोट आहे हुन जे पुठियां खैबर पास, ऐं जेको 1000 रुपया वारो नोट आहे हुन जे पुठियां इस्लामिया कॉलेज पिशावर छपियल आहे, ठीक आहे? सो इहा हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जेका मूं अवां सां शेयर कई। व्हाट्सएप खां अलावा जेके 888 ते मूंखे सही जवाब ॾिना आहिनि उन्हनि में शामिल आहिनि चनेसर सोलंगी साहब, ऐं ही कहिड़ा आहे गुलाब लाशारी गोच बिशाम खां रिंद खां गाज़ी खान रिंद साहब, ऐं ही कहिड़ा आहे जुलरी खां ख़ालिक लाशारी साहब सही जवाब ॾिनो आहे, ऐं ॿियो केरु असांखे सही जवाब ॾिनो, अज़ादार अहमद साहब सही जवाब ॾिनो, इमाम ॾिनो भंबरो साहब सभ खां पहिरियां सही जवाब ॾिनो। सो व्हाट्सएप ते जेको आहे सदा न

0: एसी चल रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है।
1: एआई वाला स्मार्ट एसी, लो बिल वो
2: हाण नरम चमक आई साफ जल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म करन लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन जेके डियन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर डी हुजे एक नओ ग्लो एक नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाले सदर में मुलाकात नायब वजीर आजम इसाकदार स्पीकर रियाज सादिक घरू वजीर मोहसिन नकवी बया भी मुलाकात में शरीक मुलाकात में मुल्क की मजमू सूरत हाल पाकिस्तान बाबत मामलन खिते की तब्दील थीदड़ सूरत हाल से गाल मारका हक के शहीद पाक फौज के भेटा पेश कई वही सदर आसिफ अली जरदारी विच ओभर की चिताण सप्लाई चेन मुतासिर थियण बावजूद अवाम के वध रिलीफ फराहम किया वे

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे छी। फेल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाय तैयारी करने की भी सलाह। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है फेल उम्मीदवार शिकायत लाय राबतो कन एहतजाज का पासो कन बी सूरत में कार्रवाई थी। फेल थीदड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाय तैयारी कन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैंजे इम्तिहानी अमल में शफाफियत मेरिट ए ईमानदारी के यकीनी बनाने लाय हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है थो। वडे वजीर मुराद अली शाह की वजाहत। साफियन के सवाल के जवाब लीदे वडे वजीर मुराद अली शाह मुझे खानदान जो को मानू पास थो है तो नालो बुधाए बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है थो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गडियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 के तकरारी पढ़ियल नतीजन दौरान साल 2025 के चटाभेटी इम्तिहान लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून से वठण जो ऐलान करे छो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मूजिब नई गडियल चटाभेटी इम्तिहान 2025 लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई 2026 से वरती वेंदी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़ फयाज शहर ए रफीउल्लाह कुरैशी की गिरफ्तारी का अग वारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सामिया मेरिट की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़न ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कराया हो। अदालत केस फयाज शहर ए रफीउल्लाह कुरैशी की 50,000 रूपये के मचलकन एवज जमानत मंजूर कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खबर सियासी हुजे या समाजी
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे।

0: जी मटियारे एफएम 91.6
1: छा अहाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुद नरम आई रोशन पहरेई इस्तेमाल में हैम क्रीम चमकायो पहजो चेहरो हुजे हीरो असल चमक
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू नबी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे
2: सकी हो तो एफएम 88 नेटवर्क्स।

0: पटियाला एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगाचे की कड़ो
2: सिंध की जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक सी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91
1: की होस्ट।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीमनेस डायमंड स्किन जैसी। हमें कहते हैं मेरी स्किन की चमक इनकी डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो।

0: FM 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM नेट की आवाज।
2: मुझे यार रखे तो मुसाफर ची पे लाल दीवान चवे तो नवाब मुझे यार रखे तो मुसाफर ची पे

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तो जंगबंदी लाया अमेरिकी सदर के चाहे हो